श्री जी के आश्रित होने के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव। कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में, भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है। बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वप धरे हो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं, भाई तुमने हमारा ये सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय, छाती में बैठा लेना, ये छाती में बैठा लेना है, अपने हृदय अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो, देखो एक लोटा कोई पानी पिला दे उसको, जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी। प्यास से व्याकुल था, एक बार इसने पानी पिलाया था। अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली। आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं, उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा न बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है, जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना। ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हैं, हमको शासन में लेकर डांट कर धुलार कर, ये हरि नहीं करते, ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं। सच्ची सच्ची गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बगारो, वो अंतरात्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता है। ये तो गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति का मतलब होता है कुम्हार की मिट्टी, सीधी भाषा में समझ लीजिए, आप कुम्हार की मिट्टी हैं। अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है, कहीं भी इतना भी, अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता, एकदम महीन। फिर पानी डाल के पैरों से गूंथता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंथ के और मुलायम।

करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भगवतिक रस बह जाएगा। और यहां थोड़ा सा क्या, पूरा चलनी है, चलनी में गैयादु है और दोष दैव को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए। धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे शांति से। जैसी आज्ञा शास्त्र करता है गुरुदेव, शास्त्र को तुम क्या समझोगे? तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे? नहीं समझोगे। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है, उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए, होली अब रंग बरसे, रंग कब बरसता है? होली, हम प्रियालाल के होली कहते हैं, प्रियालाल के होली, अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के, अभी प्रियालाल के कहां हो? तो का रंग बरस रहा है? काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम की होली तो फिर नयो नेह नवरंग नयो रस, ये बरसेगा। आए तो इसी में भींजने के लिए हो वृंदावन, प्यारी जू प्यारे जू के ऐसा प्रेम रंग, फिर आप दूसरा रंग न चढ़े। बोले जेव ही गुरुदेव मन को निर्मल किए, तब तह धरे श्याम चरणाम्बु छुवत न मैलो होए। आ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज तुम मांग कर रहे हैं, महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता, हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे? जो कपटी है, छली है, दोषों से युक्त है, उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे? बोले मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए। जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे हैं। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने ही बता दिया, बलिहारी गुरु आपने, बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं, मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन और मन है तुम्हारा मलिन, कैसे पा सकते थे? गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, वो तब निर्मल होता है। ऐसे पिटाई होगी आपकी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन। वचन आधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत, बिनु आगस अपराध। लाल जू महाराज हमारी महारानी जू के कैसे अधीन है? वचन आधीन सदा रहें। लाडली जू का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन आधीन सदा है। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। तो हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं। मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी? पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में तुम्हारा प्रवेश हो। प्यारी जू की रसमय लीला में बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है,
यहाँ की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जो हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद् राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे, कर्माण श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्त कुर्वन्त मा, गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान ग्रहणंत मुंचंतु वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया, अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघिनी का दूध है, वृंदावन का प्रेम रस, इस स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही हैं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है ऐसे पूरी रात रात पानी, जो किसान जन है वो जानते हैं। पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि दो महीने बाद इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक एक वर्ष इसमें भोजन पाएगा। एक वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है। वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे, उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में, मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म्य है, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या? सब भोग जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे, थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया, मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, अब तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप, सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जू के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं? हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित हैं, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारी जू प्यारे जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसीलिए तुम्हारे वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं नहीं, सावधान हो जाओ। तात मात सुतदार देह में मति अरुझय मति मंदा, ऐ मति मंद हित कुशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जब आप सहना शुरू कर दोगे तो आपको इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे। हर प्रतिकूलता को सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत है। प्रभु जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, शांत।

प्रिया प्रीतम संग है। अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया है। अब चूकिए मत, मां मनुस्मरण बार बार भगवत स्मरण करें। अपने लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में, विश्व में, कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं। ये कहानी नहीं कि ऐसे कही गई हो। क्यों? क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है वो लालजू महाराज, जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते, उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। तज तीरथ हरिराधिका तन दुति करी अनुराग, जिहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। यहां वृंदावन में एक कदम चले तीर्थराज प्रयाग के वास और अवगाहन का फल आपको मिल रहा है। कैसे अपार महिमा! देखो, जैसे दूध पीने से सद्या शक्ति तुरंत बल आता है, तो उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं? खास बातें हुई, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं? उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं? यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है, हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? हमारे रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है। हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है उससे बिलग हो रहा है। इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है? एक एक पग पर यहां प्रयाग, प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं। जब वो कुंभ पड़ता है, प्रयागराज यहां की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं, और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है। जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूं गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। सदगुरुदेव ने बताया और स्वयं प्रिया प्रीतम ने अपने श्रीमुख से जिस महल का जस गाया, ये वृंदावन धाम है, इसे बहुत गाढ़े से पकड़ लो। गाढ़े से पकड़ने कुछ भी हो जाए, वृंदावन के सिवा हमारे जीवन में किसी भी तीर्थ या किसी भी पुरी या किसी भी धाम का कोई आश्रय नहीं रहेगा, केवल वृंदावन। आप गृहस्थ हैं, बाहर जाइए, वृंदावन भाग के आइए। जैसे छुट्टी होने पर अपने घर जाते हैं, ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्री धाम वृंदावन है, ऐसे आश्रय से पकड़ो या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाएं, जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम। दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य है जो वृंदावन वास कर रहे। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहु हाहा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन। ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, भगवान श्री जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहां हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जाए?

0: जा रहे हैं। ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं। कैसे समझाएं? बस जैसे आंखों का अंधा उसे कहा जा रहा है आगे कुआं है मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास हम निकल जाएंगे। हमारी ऐसी कुछ दशा है, शास्त्र गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है गिर जाएगा तू, ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं, अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेशो पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा? जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है, मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर। तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे के ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहा पन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनी, बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरनते बने तावन। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या? है तो फिर आपकी तरफ अंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है? ये हमारी प्यारी जी से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिसे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में हैं, बिना विधान के आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई प्रिया प्रीतम की नहीं, पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है। अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती है तो प्रेम कैसा आपका, यही तो खास बात है। हम श्री जी के हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या, हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने, सब कोई जानता है लैला राज घराने से थी। उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे उससे पैसे ना मांगे जाए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावरा है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु उसे दे दी जाती। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए, हा लैला जलेबी। अब जितनी दुकान वाले हैं सब वहां हिसाब, तो उन्होंने कहा कि इतना एक मजनू कैसे खा सके। बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे। कह दो अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती है। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला सब, कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आई और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे, जो असली मजनू। उसने कहा आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी, जेवी से बोले बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मजनू। समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में आए, खून देने वाले मजनू नहीं है। देख लो, अंदर से देख लो। चातक को पन गहरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी प्रेण में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया। हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने निशाना लगाया, बाण मारा, गंगा जी में गिर गया, ऐसे चोच कर ली। मानो किसी पक्षी ने पूछा आप तो मरने जा रहा है, भागीरथी का एक बूंद मुख में चला जाए तो कल्याण हो जाता है, चोच के ऊपर उठाए। बोले मेरा नाम चातक है, मैं पीता हूं तो सिर्फ अपने प्रीतम मेघ के द्वारा दिया हुआ स्वाति का बूंद, नहीं तो मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी गंगा का एक बूंद अपनी चोच पे नहीं आने दूंगा। यह है चातक प्राण।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
1: कुछ हटके
3: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
4: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ।

हे परम पूज्य बृहस्पति देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमें ज्ञान प्रदान करके हमारा कल्याण करें। बीज मंत्र।

हे विद्यापति बृहस्पति देव, हम आपके बीज मंत्र का जाप करते हैं। हमें ज्ञान प्रदान करें, हमारा कल्याण करें, हमारी रक्षा करें।

0: When you face failures, don't change your goal, change your strategy. You are listening to the thoughts of Mr. Vivek Bindra, who is a motivational speaker and a corporate trainer.
1: आप सबका स्वागत है. मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच. आज बात करूंगा माइंड कंट्रोल और इमोशन कंट्रोल की. काफी लोग बात करते हैं मूड की, कॉन्फिडेंस की, माइंड की, इमोशन की, उसको कैसे बिल्ड किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए. ये वीडियो भगवद गीता के पे आधारित एक शक्तिशाली टूल और फ्रेमवर्क के साथ उसको लेने के लिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए. कृष्ण कंफर्म करते हैं माइंड कंट्रोल के विषय में बहुत कुछ गीता के अंदर. पहला मैं श्लोक लेता हूं, विषयाविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहि नाम रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते. कृष्ण क्या कहते हैं, यू कैन नॉट डिस्कार्ड द लोअर इमोशन अनलेस यू डेवलप अ हायर इमोशन. यू कैन नॉट डिस्कार्ड द लोअर कॉन्शियसनेस अनलेस यू डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस. राइट, सो डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन. एक बार और, पीछे मैंने एक सेक्स अटैचमेंट वाले वीडियो में सिमिलर श्लोक पर चर्चा किया था. डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन. सबसे पहला रूल क्या है, ना तो आप माइंड कंट्रोल कर सकते हो कभी भी, ना ही आप इमोशन कंट्रोल कर सकते हो कभी भी, ना ही आप मूड कंट्रोल कर सकते हो कभी भी. तो आप कर क्या सकते हो, आप इनको रिप्लेस कर सकते हो. कम ऑन, क्या कर सकते हो, रिप्लेस. जैव धर्म में ठाकुर भक्ति विनोद ने 5 प्रकार की चेतनाओं के विषय में चर्चा की थी. आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित. ये 5 प्रकार की चेतनाएं होती हैं. पूर्ण विकसित इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस. आप किस कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं उसको क्या धीरे धीरे अपलिफ्ट कर सकते हैं. यू कैन नॉट रिजॉल्व अ प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच हैज क्रिएटेड इट. एक बार और, कम ऑन, आप उस समस्या को सॉल्व ही नहीं कर सकते जिस चेतना में उस समस्या को उत्पन्न किया गया था. अगर आप लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आच्छादित, संकुचित के लेवल पे फंसे हुए हैं और यहां आप समस्या महसूस कर रहे हैं, तो इस समस्या को जिस चेतना ने इस समस्या को प्रोड्यूस किया, उसी चेतना में रहकर आप इस समस्या को रिजॉल्व नहीं कर सकते. तो पहला रूल क्या है, अपनी चेतना को उठाना पड़ेगा. कम ऑन, क्या करना पड़ेगा, रेज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन. परम दृष्टा निवर्तते, नहीं तो तकलीफ रहेगा. अब कृष्ण से छठे अध्याय के 34वें श्लोक के आसपास चर्चा हुई कृष्ण और अर्जुन की, कि माइंड कंट्रोल करें कैसे. अर्जुन क्या कहते हैं, मुझसे तो माइंड कंट्रोल होता ही नहीं भगवान. तो छठे अध्याय में कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो हो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासे न तु कौन्तेया वैराग्य न च गृहते. कम ऑन, अभ्यास वैराग्य, अभ्यास न तु कौन्तेया वैराग्य न च गृहते. अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही होगा, नहीं तो असंशयम महाबाहो, हे महान बलशाली भुजाओं वाले अर्जुन, आपसे भी मन्ना दुर्निग्रहम चलम, माइंड कंट्रोल नहीं होने वाला. तो बोला फिर करना क्या है, अगर मैं भी नहीं कर सकता तो करना क्या है. तो कृष्ण ने क्या कहा, कुछ अभ्यास और कुछ वैराग्य. आप जानना चाहते हैं क्या अभ्यास क्या वैराग्य. अभ्यास बिल्ड करना है ऊंची चेतना में आने के लिए, वैराग्य क्रिएट करना है इस चेतना में रोकने के लिए जो सोर्सेज हैं उनसे वैराग्य क्रिएट करना. अभी ये करेंगे कैसे, देखिए ध्यान दीजिए. आपका माइंड बैंक एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है. उस स्टोर हाउस में बहुत प्रकार के पुरानी एक्सपीरियंस और पुरानी लेवल की कॉन्शियसनेस के द्वारा इमोशंस ऑलरेडी है, कुछ छुपे हुए, दबे हुए, कुछ उठे हुए, कुछ निकले हुए, अलग अलग प्रकार के उस डेटा बैंक के अंदर इमोशंस है. देर आर 36 टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिसमें से पहले 12 नेगेटिव इमोशन, बीच के 12 थोड़े न्यूट्रल इमोशन और अगले 12 बड़े स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोडक्टिव इमोशन. आपके पास मेमोरीज है, आपके स्टोर हाउस के अंदर माइंड में मेमोरीज है. उन मेमोरी में एक्सेस करिए पहले किसी इंसिडेंट को जो प्रोडक्टिव इमोशन से जुड़ा हुआ इंसिडेंट था. अब मैं फ्रेमवर्क दूंगा, अभी पूरा समझ में नहीं आएगा आपको जब तक पूरा वीडियो नहीं देखते. पूरा वीडियो देखिए, रुके भी साथ में, मेरे साथ ही रहिए. अभी आप एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं, प्रोडक्टिव इमोशन की मेमोरी को वापस रिवाइव करना है. याद करिए वो दिन जो आपकी लाइफ का हाईएस्ट अचीवमेंट का दिन था. याद करिए कोई ऐसा दिन जिस दिन आप बहुत प्रोडक्टिव, बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस किए थे. याद करिए कोई ऐसा दिन जिस दिन आपने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया था. उस दिन आपके आसपास क्या हो रहा था, उस मेमोरी बैंक से उसको ढूंढ के निकालिए, ढूंढिए उस मोस्ट प्रोडक्टिव जो एक्सपीरियंस था आपके जीवन का, जो बहुत उस दिन आप बहुत खुश थे, आपने उस दिन बहुत कुछ अचीव किया था अपनी लाइफ में, आपकी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, याद करिए। अब तीन चीजें मैं तीन प्रश्न दे रहा हूं। See what you saw, feel what you felt, hear what you heard। देखिए, see what you saw, पहला चीज, उस दिन आपके आसपास कौन था उस सबको देखिए। दूसरा, hear what you heard, लोग आपके बारे में उस दिन क्या बात कर रहे थे उसको याद करिए। उसके बाद feel what you felt, उस समय आपके मन में क्या emotions थे, आप कैसा सांस ले रहे थे, आप कैसा experience कर रहे थे, आपके कंधे कैसे थे, आपका चेहरा कैसा था, आप कैसा feel कर रहे थे उस दिन। उन इन तीन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढिए। यानी कि दो steps हैं। पहला step, वो incident जो most productive incident था आपकी life का, उसको ढूंढ के लाइए, अपने मेमोरी बैंक से निकाल के लाइए। दूसरा, तीन प्रश्न लीजिए अपने आप से, करिए। सी व्हाट यू सॉ, देखिए उस दिन क्या हो रहा था आपके आसपास, कौन कौन था। हियर व्हाट यू हर्ड, लोग आपसे क्या बात कर रहे थे आपके साथ में। फील व्हाट यू फेल्ट, आपका फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी कैसा था उस समय, उसको वापस रिवाइव करके लाइए। ये तीन प्रश्नों का जब उत्तर मिलेगा तो वो न्यूरो पाथवे खुल जाएंगे आपके। क्या खुल जाएंगे? न्यूरो पाथवे खुल जाएंगे। अब आपके मेमोरी बैंक से वो वापस आकर के आपके कॉन्शियसनेस में बड़ा होने लग जाएगा। उस समय की जो कॉन्शियसनेस थी, वो कॉन्शियसनेस तुरंत वापस आ जाएगी। और वो कॉन्शियसनेस आते ही आप अपने माइंड को, अपने मूड को, अपने इमोशन को डेवलप कर जाएंगे, उस एलिवेटेड कॉन्शियसनेस पे फिर से वापस आ जाएंगे। और उस एलिवेटेड कॉन्शियसनेस से, उस मोस्ट प्रोडक्टिव कॉन्शियसनेस, मोस्ट प्रोडक्टिव मेमोरी, जिसको आप ट्यून इन कर गए, एफएम चैनल, एक समय में एक शहर में 7-8 एफएम चैनल चल रहे होते हैं, आप ट्यून इन करते हैं और बेस्ट एफएम चैनल को चूज करने का अधिकार है आपके पास। एक समय में 700 टीवी चैनल्स हैं आपके टेलीविजन पे, किस चैनल को आप ट्यून इन करना चाहते हैं और किस चैनल को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसका पूरा अधिकार है आपके पास। देयर इज अ रेंज ऑफ इमोशंस इन योर लाइफ। कपड़े खरीदने जाते हैं आप किसी शोरूम के अंदर, देयर इज अ रेंज ऑफ क्लोथ्स इन द शोरूम। अभी जो पहला कपड़ा मिला, ऐसा नहीं कि आप वही लेकर के पहन लेते हैं, आप चूज करते हैं जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है, जो आपके लिए ठीक है, जो आपके लिए अच्छा है। ठीक उसी प्रकार से, डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस, क्रिएट एंड चूज योर एक्सपीरियंस। एक बार और, बड़ी अच्छी बातें बोल देता हूं बीच बीच में मैं, कम ऑन। डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, क्रिएट एंड चूज योर एक्सपीरियंस। अपने मेमोरी बैंक में जाइए, निकालिए, ढूंढ के निकालिए। सी व्हाट यू सॉ, उस दिन क्या हो रहा था, लोग आपसे क्या बात कर रहे थे, वो सारी मेमोरी को बड़ा करते जाइए, बड़ा करते जाइए, बड़ा करते जाइए। और जब आपकी कॉन्शियसनेस उस मेमोरी से भर जाएगी, आप उसी कॉन्शियसनेस, एलिवेटेड, सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव कॉन्शियसनेस के पीक स्टेट पे, पीक परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी वाली कॉन्शियसनेस में एंटर कर गए, जैसे ही आप इस लेवल पे आए, अब क्या होगा, अब आपके पास यही हाईएस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव मूड और वो वही माइंडसेट फिर से आ गया। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे टूल्स को ध्यान से देखते रहिए। मैं आपके लिए कई ऐसे टूल्स डालने वाला हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। आजकल मैं स्टूडेंट्स के लिए फ्री सेमिनार्स की तैयारी भी कर रहा हूं। 15 अप्रैल को मेरा पहला फ्री बड़ा सेमिनार स्टेडियम में होने वाला, इंदिरा गांधी स्टेडियम में।

जाएगा, और तीसरा उसका रिजल्ट क्या आएगा, हाउ डू यू फील नाउ। इमेजिन करिए अगर आप हर समय मोस्ट प्रोडक्टिव पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी की कॉन्शियसनेस को बरकरार रख पाए तो आपका जिंदगी 10x हो जाएगा। कम ऑन, क्या हो जाएगा, 10x, यू कैन ग्रो 10 टाइम्स बेटर। इमेजिन करिए अगर हर समय आप उसी कॉन्शियसनेस में रह पाए जो पीक परफॉर्मेंस की कॉन्शियसनेस थी। एक साधक को साधना के लिए उसको सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को वापस आना चाहिए, एक स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए अपना मोस्ट प्रोडक्टिव पढ़ने वाले दिन की फीलिंग और उसके इमोशन, उसकी साइकोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी को खींच के लाना चाहिए। इसी प्रकार एक बिजनेसमैन को नेगोशिएशन के दौरान, सेल्स के दौरान, परिवार में, रिलेशनशिप में, जिम में, हेल्थ के लिए, हर समय जब भी आप चाहें एक स्पोर्ट्समैन, एक एथलीट अपनी बेस्ट कॉन्शियसनेस को रिवाइव कर सकते हैं। केवल याद रखिए फ्रेमवर्क, सी व्हाट यू सॉ, फील व्हाट यू फेल्ट, हियर व्हाट यू हर्ड। तो उसका अर्थ क्या हुआ, आपको महसूस नहीं करना है, अपने आप को महसूस कराना है। राइट, यू ट्यून इन टू व्हाट यू वांट टू क्रिएट, महसूस जो इमोशन जो आप एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस होता नहीं है, एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाता है। आप कर सकते हैं, आपके जो लॉस्ट प्रोडक्टिव न्यूरो पाथवे थे आप उनको रिकॉल के द्वारा वापस ले आएंगे। वो न्यूरो पाथवे जो आपके लिए खो गए थे, छुप गए थे, दब गए थे, आप उनको वापस रिवाइव करके ले आएंगे, उन्हीं प्रोडक्टिव न्यूरो पाथवेज को जनरेट कर देंगे।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

RG Anjali. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? इस शानदार से ट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी। वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें है आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हो जाइए रेडी, फटाफट से मसाला वाली चाय अपने हाथ में रख लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस शानदार से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जा।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

शानदार सुरक्षा के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो चलिए बात कर लेते हैं वेदर अपडेट की। अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें 38 डिग्री जाएगा, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 30 डिग्री है और विंड स्पीड आपको 16 मिलने वाली है और ह्यूमिडिटी होने वाली है 51% और डे रहने वाला है सनी सनी, यानी कि मौसम बदल गया है और फिर अगले हफ्ते बारिश की प्रेडिक्शन है। लेकिन तब तक इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखेगा, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।

0: सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

कहते हैं ना, अगर कुछ भी अच्छे काम की शुरुआत करनी होती है तो उससे पहले मीठा खा कर जाइए, काम अच्छा होगा। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि मीठा खाना बुरी बात नहीं, लेकिन हेल्थ का बैलेंस बनाना जरूरी है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आर्यशंशी आपके साथ, और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर मैं फिटनेस वाला फंडा लेकर आ गई हूँ। सो यहाँ पर ना एक कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। सो यहाँ पर एक शख्स हर साल अपनी कार की सर्विसिंग टाइम पर करवाता था, लेकिन अपनी हेल्थ चेकअप्स को हमेशा पोस्टपोन करता रहता था। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन उसे समझ आया कि बॉडी भी एक मशीन की तरह है, जितने केयर दोगे उतना बेहतर साथ देगी। तो ये कहानी आपके लिए थी, एंड मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए, बिकॉज हम इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए चल रहे हैं अपने कंधों पर। कभी सोचा है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए खुद की मेंटेनेंस तो लगेगी ना, यानी कि एक बेहतर लाइफस्टाइल, एक अच्छी डाइट, प्रॉपर स्लीप और अपनी एक्स्ट्रा केयर, बस इतना ही चाहिए हमें। एंड फिर देखिएगा कि हम हर बीमारी से जीत सकते हैं। अगर बात करें ना डायबिटीज की, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर डायबिटीज है क्या। सो डायबिटीज एक कंडीशन है जिसमें बॉडी ब्लड शुगर लेवल्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ना बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो इन कॉम्प्लिकेशन

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर

0: अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
1: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: हाँ तो अर्ज किया है।
3: आहो, अर्ज होता है अर्ज।
2: कर रहे हैं आप, सुनो तो
3: इरशाद।
2: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
3: तुम्हारे नंबर पे?
2: हाँ जी।
3: अच्छा,
2: और उन्होंने पूछा क्या?
3: क्या पूछा?
2: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
3: क्या बात कर रहे हो?
2: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
3: अच्छा,
2: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
3: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
2: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
3: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
2: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
3: बाय।
2: सुनो तो, कहाँ चली?
3: बाय बाय।
4: रेडियो महारानी है।

अगर प्लेनेट को क्लीन रखना चाहते हो ना तो भाई प्लास्टिक फ्री करना पड़ेगा प्लेनेट को। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। अब बात हो ही रही है प्लास्टिक की, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है प्लास्टिक में। एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है, साथ ही ओशन और वाइल्ड लाइफ को हार्म करता है। और पता है आपको, प्लास्टिक ना सालों साल प्लेनेट पर पड़ा रहता है, यानी कि खत्म ही नहीं हो सकता। तो आज से ही स्मॉल चेंजेस एंड बिग इम्पैक्ट की तरफ हम लोग काम करेंगे, यानी कि आज से ही क्लोथ बैग इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, रीयूजेबल बॉटल्स का यूज करना शुरू कर दीजिए, सिंगल यूज प्लास्टिक अवॉइड कीजिए और साथ ही रिसाइकल हैबिट अडॉप्ट कीजिए, सो दैट कि हम अपने अर्थ को ना सब कुछ हेल्दी दे सके। और अर्थ हमारी जरूरत है और उसकी केयर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस ये चीज याद रखिएगा, एक स्मॉल इको फ्रेंडली हैबिट फ्यूचर को बेटर बना सकती है। और हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या सिर्फ पॉल्यूशन ही देंगे? नहीं ना, अगर हमें अपनी आने वाली जनरेशन को एक हेल्दी प्लेनेट देना है ना, तो भाई काम तो आज से करना पड़ेगा। सो माय डियर लिसनर्स, आज ही इस हैबिट को अडॉप्ट कीजिए और अपने साथ साथ ना अर्थ का भी ख्याल रखिए। और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: Oh, shit!

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: सचिन, ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हा?
2: पापा, रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ किस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो, जैसी।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

आजकल ना हम हर चीज में कन्वीनियंस ढूंढते हैं और फिर कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी प्राइवेसी को गवा देते हैं। इसलिए कहा जाता है कन्वीनियंस के साथ प्राइवेसी का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो यहाँ पर ना साइबर क्राइम का एक और रीसेंट इंसिडेंट मैं आज आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ। एक रीसेंट इंसिडेंट में एक वुमेन ने एलिगेशन लगाया कि रेस्टोरेंट के QR बेस्ड ऑर्डरिंग सिस्टम में दिए गए पर्सनल डिटेल्स का मिसयूज हुआ है। सो अगर बात की जाए ना आखिर ये स्कैम कैसे हुआ और ये स्कैम का पार्ट कैसे है। सो यहाँ पर स्कैम कुछ इस तरह से हुआ, जब इस वुमेन ने फूड ऑर्डर करने के लिए उस रेस्टोरेंट का QR स्कैन किया, अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करी और उसके बाद में पता चला इन्हें कि रेस्टोरेंट के एक स्टाफ ने उनके डिटेल्स को यूज कर लिया है, व्हाट्सएप पर पर्सनल कॉन्टेक्ट किया, बातें करने लगा और यहाँ तक ये तक बताया कि उस लेडी के बारे में क्या क्या उस इंसान को पता है। सो अब आप देखें कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कितनी पर्सनल है। तो यहाँ पर ना एक कंसर्न ये रेज हुआ कि कस्टमर डेटा प्राइवेसी का क्या, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिसयूज हो रही है, डिजिटल सेफ्टी और ट्रस्ट इश्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। सो माय डियर लिसनर्स, स्मार्ट तरीके से क्या करें अब। सो माय डियर लिसनर्स, आपके लिए आज एक मैं रिमाइंडर लेकर आया हूं। रिमाइंडर ये है, हर जगह अननेसेसरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, प्राइवेसी पॉलिसीज और परमिशन चेक जरूर करें, सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें, सो दैट कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने से बचा सके। बिकॉज कन्वीनियंस अच्छी चीज है पर प्राइवेसी उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो डिजिटल दुनिया में अवेयरनेस ही रियल प्रोटेक्शन है, इस चीज का ख्याल रखिए। और अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं ना तो जो चीज थोड़ी सी मेहनत से हो सकता है उसमें स्मार्ट वे मस्त ढूंढिएगा, क्योंकि स्कैम की अगर बात करें ना तो स्कैम वही होता है जहां हम शॉर्टकट लेते हैं। सो इस चीज का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जब ट्रैफिक हो टाइट और मौसम का मूड हो लाइट, वही मॉर्निंग एक्सप्रेस में मिलती है ट्रेंडिंग बाइट्स। सुनना ना भूले सुबह 7 से 10 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हूँ ना, तो ये भाई यहाँ पर नेगोशिएशन करना बहुत टफ होता है, लेकिन अपनी इंडियन मॉम्स सुपर मॉमी, तो भाई इनके सामने तो एचआर भी वीक पड़ गया। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो रेडियो महारानी के मॉर्निंग एक्सप्रेस में मैं लेकर आ गई हूँ आज का सोशल स्यापा। सो स्यापा ये है कि अप्रेजल मीटिंग में हो गई सुपर मॉमी की एंट्री, यानी कि सोशल मीडिया पर ना इन दिनों एक फनी सटायर वायरल हो रहा है जिसमें गुरुग्राम के एक एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी अप्रेजल मीटिंग में अपनी मम्मी को बुलाया। सो भाई मम्मी ने यहाँ पर ऐसी नेगोशिएशन की ना कि सैलरी हाइक के साथ साथ ना प्रमोशन भी मिल रही है। तो भाई ये स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पर, और वायरल स्टोरी का हाईलाइट सामने आया, और हाईलाइट ये है, मेरा बेटा डेडलाइन की वजह से खाना नहीं खाता, आपको पता है, और आप उसकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे। एचआर पॉलिसीज वर्सेस इंडियन मॉम इमोशंस बहुत जोरों पर थे इस वीडियो के अंदर नजर आए। अप्रेजल मीटिंग बन गई सब्जी मंडी स्टाइल बार्गेनिंग। सो भाई यही होता है। तो भाई जितने भी आज मुझे ऑफिस वाले सुन रहे हैं, जितने भी मुझे बॉस सुन रहे हैं ना, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने एम्प्लॉय की मेहनत का पैसा तो उसे दीजिए ना, जो मेहनत आपको नहीं दिखती ना वो घर में मम्मी को दिख जाती है। सो ये स्टोरी कम्प्लीटली सटायर है, मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट और फन के लिए। सो अगर इंडियन मॉम्स की मैं बात करूँ ना, तो वो सिर्फ घर नहीं संभालती, वो कॉर्पोरेट डील्स भी क्लोज कर सकती है। और ऑनेस्टली भाई सुपर मॉमीज का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल पर होता है। तो माय डियर लिसनर्स, अगर आपका बॉस भी आपको दुखी कर रहा है ना, तो आज अपनी मम्मी को लेकर जाइए ऑफिस में और बस बात करा दीजिए मम्मी से कि सैलरी हाइक भी हो जाएगी और आपके बॉस को थोड़ा सा आपसे डर भी लग जाएगा। वेल सो इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया एक म्यूजिक ब्रेक लेने का, तब तक एंजॉय कीजिए रेडियो महाराज में मॉर्निंग एक्सप्रेस शो। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: चुप निरतिले സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ।

0: वेलकम बैक टू रेडियो मनाली, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ इस वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक। आप सभी को पता है इन दिनों मौसम ने कुछ इस तरह से अंगड़ाई ली है, कभी बारिश, कभी तूफान और कभी आंधी, ये सब एक साथ देखने को मिल जाता है। तो जो ये ट्रांजिशन वीक है इसका हमारी हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, यही जानने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है योगा एक्सपर्ट राधिका जी। सो आज इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो पहले राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। अगर इस ट्रांजिशन सीजन की बात की जाए तो सबसे पहले ये बताइए, ईटिंग हैबिट में क्या चेंज करना चाहिए, क्या अवॉइड करें और क्या इंक्लूड करें?
1: रेनी सीजन में मुझे लगता है जो अवॉइड करना चाहिए आपको, सबसे पहले आपको रॉ सैलेड्स अवॉइड करने चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि रॉ सैलेड्स पे जो भी आपके इन्फेक्शन या जो भी बैक्टीरियाज है ना वो बहुत जल्दी स्टिक करता है। और रेनी सीजन बहुत ज्यादा वैसा होता है कि सब्जी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कितने ह्यूमिड में आ रही है, किस तरीके से वो लाई गई है ना, वो हमको नहीं पता होता। कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स ऑफ कोर्स कच्चे होते हैं, बट उसके अंदर भी आप सीजनल फ्रूट्स खाएं, जैसे बाहर से आते कि ये वहां का है, ये वहां का है, आई डोंट प्रेफर दैट। मुझे लगता है जिस रीजन में रह रहे हैं वहां के उस सीजन के जो फ्रूट्स होंगे वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होंगे। उसके बावजूद भी आपके सीजनल भी हैं, बट इट मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपरली वॉश कर रहे हैं, वो काफी देर पानी में रखे गए हैं, उसके ऊपर जो भी उसकी लेयरिंग हुई की वो हटाई गई है। दूसरा, कोशिश करो कि कच्ची चीजें तो ना ही खाओ, जो सैलेड्स जिन लोगों को हैबिट है, हेल्दी वर्जन में भी हम खाते हैं। सो मेक श्योर कि मॉनसून सीजन में आप उनको बॉइल्ड खाओ, स्टीम्ड खाओ, ताकि कोई भी चांसेस अगर वो बैक्टीरियाज के रह गए हैं ना वो भी खत्म हो जाए। दूसरा, फ्राइड और जो आपके बाहर रोड साइड फूड होता है, मतलब देखो बहुत लोगों का बिजनेस है वो, देखो बहुत ज्यादा लोग डिपेंड करते हैं, बट आपकी अपने शरीर के प्रति भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो

0: फूड इस टाइम पे मुझे लगता है कि कम खाना चाहिए, क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक आपको कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं दिया जा रहा उनको जिससे कि वो चीज मेंटेन हो रही है, तो इसीलिए वो बहुत जल्दी हिट कर देता है। तो ये चीज आपको जरूर अवॉइड करनी चाहिए। और जो एड ऑन करने को मैं बोलूंगी, जैसे मैं एक सिरप की बात कर रही थी जो मैं अपने बच्चों को भी देती थी, इस सीजन में आप बच्चों को इवन अदरवाइज भी दे सकते हो, अपार्ट फ्रॉम जो आप बहुत गर्मी का सीजन है तब आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हो या ट्वाइस अ वीक कर सकते हो। अदरवाइज इम्यूनिटी के लिए बड़ा हो बूढ़ा हो या यंग हो, मुझे लगता है ये बेस्ट मेडिसिन है। आप कुछ तुलसी के पत्ते ले लो
1: जी,
0: उसको अच्छे से क्रश करके पानी में बॉइल होने दो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बच्चे को पानी देना है तो वो आप एक कप के हिसाब से उबलना रखोगे, आधे कप होने तक वो बॉइल होएगा, ताकि उसके जो अंदर के एसेंस है ना वो उस पानी में उतने मात्रा में चले जाए कि वो आपको असर करे। तुलसी के पत्ते आपने उबाल लिए, उसके साथ में आप उसमें काली मिर्च साबुत उबाल दो, पिसी हुई नहीं, वो बच्चों को गले में लग सकती है, बड़ों को भी। साबित काली मिर्च आपने उसके अंदर उबाल ली, उसके बाद आपने उसको छान के इसमें हल्का अदरक भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी के लिए वेरी गुड इन फॉर योर स्टमक ऑल्सो। हल्का सा अदरक की तीन चीजें उबालनी है, तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च उबाल लिया। छानने के बाद उसमें थोड़ा सा एड ऑन कर दो शहद, बच्चों के लिए इतना इज इनफ, ठीक है। अगर आपके बच्चों या आपको लेमन का टेस्ट डेवलप है तो वो अगर बहुत गर्म है तब तो लेमन नहीं डालना है, अगर आप वार्म वे में पी रहे हो हल्का सा लेमन आप डाल दो, आप देखना, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अमेजिंग रिजल्ट्स। और लोग सबसे ज्यादा गलती मुझे पता है कहाँ पे लगता है करते हैं, कि बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम पे देखो, इतनी चीजें पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, सेव भी कर लेंगे। मैं कहती हूँ 10 में से अगर आपने एक अच्छी चीज भी सुनी है ना और उसने एक को भी अप्लाई करा है, आई कैन गारंटी यू विद इन अ वीक और 10 डेज इट विल शो यू द डिफरेंस। बट मेक श्योर कि आप कर रहे हो, 100 रील्स आप सेव करते हो दिन में, उसके अंदर आपको लगता है मैं ये भी करूंगी, इतने बड़े गोल्स और इतनी सारी चीजें मत सेव। अगर दो चीज सुनी है ना, एटलीस्ट उसमें से एक ट्राई कर लो अपने सच्चे दिल से, एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट।
1: जी, थैंक यू सो मच राधिका जी अपने वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए। एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। तो सुन के जाओ। हेलो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ध्वजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
2: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक स्पेशल गेस्ट योगा एक्सपर्ट राधिका जी, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक पर। सो राधिका जी, मैं आप ये जानना चाहती हूँ, हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करें ड्यूरिंग दिस सीजन, और क्या मॉनसून में भी उतना ही पानी पीना जरूरी है जितना कि समर्स में?
1: बिल्कुल, मॉनसून में उतना ही पानी पीना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि बिकॉज ऑफ वही कि ह्यूमिडिटी है, चिपचिपापन है, हमें लगता है बॉडी में ऑलरेडी इतना पानी पानी हमें लग रहा होता है, स्टिकी लग रहा होता है, और उसके बाद हमें हैबिट ही नहीं। गर्मी में वही करें ना, हर किसी के पास बॉटल हमेशा रहेगी, कुछ ना कुछ रहेगा, बट इस वेदर में हमें लगता है कि हम इसको ना ये सोच लेते हैं हल्का ठंडा मौसम आ गया बेसिकली, तो हमारे को जरूरत नहीं लगती है उतना, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर ऑलरेडी बाहर जा रहा है, तभी आप स्टिकी फील कर रहे हो, राइट। आपकी स्किन में मिलियंस ऑफ पोर्स हैं जो आपकी बॉडी से पानी थोड़ा थोड़ा करके, मतलब आप वो सोचो पूरी बॉडी में से हर पोर में से आपके स्वेटिंग के उसमें बाहर आ रहा है वाटर, राइट। आप उसको बैलेंस तो करोगे ना, क्योंकि आपका ही नेचुरली आपकी, और इसके अंदर सिर्फ आपकी बॉडी से पानी नहीं निकल रहा होता, जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं आपकी बॉडी के वो भी निकलते हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है, बट मेक श्योर कि आपकी हाइड्रेशन के फॉर्म अच्छे फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि आप उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस और ये चीजों को, यू नो दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस हेल्दी ड्रिंक्स, जिसके अंदर कुछ चीजें, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैं अपने बच्चों को और खुद जो लेती हूँ, जैसे अब हर कोई नारियल पानी कहते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है, बट हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता जी, राइट। तो आप छोटी चीजों से स्टार्ट, एप्पल ले लिया, एप्पल में नेचुरल मीठापन होता है, आप उसे मिक्सी में ग्राइंड कर दो पानी के साथ में, ठीक है, और उसको पूरा अच्छे से चर्न होने दो, आपको उसका फाइबर नहीं छानना है
0: जी,
1: ठीक है। आपने उसको नेचुरल अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड हो, ठीक है, उसके अंदर आप हल्का सा सॉल्ट और लेमन डाल के पियो, मैं कह रही हूँ इतना टेस्टी वो बड़ों के लिए और बच्चों के लिए दोनों वे में। तो ऐसे सोर्सेज वी हैव टू फाइंड आउट कि जिससे आप नेचुरल वे में बजाय किसी चीनी को ऐड करें आप अच्छी चीजों से हाइड्रेशन दो। लस्सी, छाछ, बेस्टेस्ट फॉर्म लाइट आपकी ब्लोटिंग को मैनेज करता है, आपके हर तरीके से, यू नो इट्स वेरी लाइक हेल्पफुल टू योर बॉडी। तो हेल्दी वर्जन मुझे लगता है आपके जो भी आपके लिक्विड फॉर्म के होंगे उनको ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आपकी बॉडी से मिनरल्स और वो सब निकल रहे हैं ना, तो उनको बैलेंस करना आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। साथ में आपकी हाइड्रेशन में, सिर्फ पानी को हम हाइड्रेशन नहीं बोलते, राइट, आपके जो जूसी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर बहुत मिनरल्स होते हैं जो आपके हाइड्रेशन को बैलेंस करते हैं। आप इसके अंदर प्लम, जो आपके सीजनल मॉनसून दिल्ली एनसीआर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है और सीजनल फ्रूट है, जामुन हो गया, आड़ू, जो नेचुरल फ्रूट इस टाइम के, वो सब ऐड ऑन कर दो। हाइड्रेशन में हमारे, जैसे हम वर्ड हाइड्रेशन बोलते हैं हमें लगता है हमें पानी पीना है, आप इसे हर वे में यूज कर सकते हो। आप इस मौसम में खाने के लिए, अगर मैं बोलूं हाइड्रेशन को बैलेंस करने के लिए, ड्राई सब्जियां ना खाके आप दलिया लो, पानी भी चला गया, वेजिटेबल्स चले गए, उसने आपकी बॉडी के तो मेंटेन कर दिया हाइड्रेशन को, तो आप इस तरीके से सब चीजों को ऐड ऑन करके अपनी हेल्थ को बेनिफिट कर सकते हैं।
0: थैंक यू सो मच राधिका जी, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे आज, बहुत कुछ है आज आपसे जानने के लिए, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे क्लास तो पीती जा सुन।
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियां नहीं सुनती इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

Angelina. शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं आरजे अंजली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ की हैं, बहुत सारी अपडेट्स मैंने आज आपको दी हैं और मेरा टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। बेसिकली सुबह 7 बजे आई थी और 10 बजने वाले हैं, तो भाई कल फिर से मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ। लेकिन तब तक मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ऑन योर रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
3: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
4: ये सड़कें तुम्हारी कहानियां नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
5: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
0: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी। 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं,
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

AQI के बारे में। तो AQI जहां पर इस वक्त 400 प्लस तक पहुंचा हुआ है, जो कि खतरे की घंटी ही है बॉस। इतना AQI है तो हम लोगों को संभलना तो पड़ेगा ही, चीजों को ध्यान में रखें। और साथ ही साथ जहां पॉसिबिलिटीज है कारपूल करें, गार्बेज डाले जाए, वाटर फॉगिंग करें, ताकि शहर की हवा को हम साफ सुथरा बना सकें। बाकी चर्चा उतरेंगे सुबह का ऑर्डर।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ बात करते हैं दोस्तों, आज जैसे कि आप सब जानते हैं आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। जी हाँ, और इसी बीच शहर में सेक्टर 15A जगन्नाथ मंदिर की ओर से यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में करीब 15,000 से ज़्यादा श्रद्धालु शामिल होते हैं, जहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 35 फुट ऊंचे भव्य रथ पर सवार होकर मौसी के घर के लिए प्रस्थान करेंगे। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ 9 दिनों तक अपनी मौसी के घर रहेंगे और सेक्टर 15-16 के डिवाइडिंग रोड पर मंदिर कमेटी की ओर से मौसी का घर भी बनाया गया। तो आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की आप सबको बहुत बहुत बधाई है, और बिल्कुल यहाँ जाकर के आप भी इस आयोजन का आनंद लीजिए। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ साइबर फ्रॉड्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आए दिन साइबर फ्रॉड्स होते नजर आते हैं, कभी एप्लीकेशंस के नाम पर, कभी एडवर्टीजमेंट्स के नाम पर, कभी लिंक्स, कभी व्हाट्सएप पे शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पर, तो कभी कोरियर बॉय के नाम पर, ना जाने कितने ही फ्रॉड। एपीके फाइल्स के थ्रू भी फ्रॉड्स होते नजर आते हैं। आपसे यही कहना चाहूंगा, प्लीज ज्यादा से ज्यादा अवेयर रहें। जिस भी ऐसे साइबर फ्रॉड्स के बारे में पता चल रहा है और भी अवेयरनेस क्रिएट करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स के साथ बैठ करके। जितनी चर्चा होगी उतना अवेयरनेस क्रिएट होगा। कोई भी ऐसा लिंक आता है, फाइल आती है, आपको अननोन नंबर से कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, अननोन ग्रुप्स में ऐड किया जाता है, प्लीज उन्हें लीव कीजिए उनके दिए गए लिंक्स पे। उनकी बातों में ना ट्रस्ट करें कि आपको उस टाइम पे पैसा डबल होते नजर आएगा। ये साइबर फ्रॉडर्स हैं, आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है, ये उसी का अंदेशा। तो प्लीज़ इन चीज़ों से सावधान रहें। बाकी ऐसी भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: ईशान,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी. यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधारा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद.
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर.
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409, सेक्टर 15, नियर गेट नंबर 3, फरीदाबाद, हरियाणा. और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट. सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों आज सिनेमा के गलियारे में बहुत चर्चाएं करने वाला हूँ कि कौन कौन से नए गाने सिनेमा घरों में रिलीज होने को है तैयार, तो कौन सी नई कहानियां, ट्रेलर, टीजर, फर्स्ट लुक, तो कुछ नई जोड़ियां डेब्यू के साथ सिल्वर स्क्रीन पर आने को है तैयार। कहीं होगा एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, सस्पेंस और थ्रिल का डबल डोज, तो कहीं सिल्वर स्क्रीन के साथ साथ ओटीटी पर भी आ रही है कुछ नई कहानियां। बॉलीवुड से लेकर के साउथ इंडस्ट्री की चर्चा है, तो कहीं होगा पंजाबी गानों का धमाल, तो कहीं है हॉलीवुड का कमाल। ये सारी चर्चाएं करने वाला हूं आज के सिनेमा के गलियारे में। लेकिन ये सारी चर्चाएं करने से पहले यानी कि सिनेमा के गलियारे में घुमाने से पहले सुना देता हूँ कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम को छटके, और ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सभी के लिए।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फो मई फाइव। यहाँ दोस्तों बात करते हैं एक और बढ़िया कहानी के बारे में। जब ब्राउन और ताशकारी दोनों ऑलरेडी ओजी पर आ चुके हैं जो कि क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज, जहाँ बात की जाए तो ताक्षी द स्मगलर वेब सीरीज ओजी पर 14 तारीख को 2026 को रिलीज हुई और ब्राउन की बात की जाए तो 5 जून को कन्फर्म किया। ये दोनों कहानियाँ बहुत ही बेहतरीन कहानियों में से एक है, लेकिन दोनों कहानियों का नाम इकट्ठे लेना किस लिए हुआ ये आपको पता है। दोनों ही क्राइम थ्रिलर सीरीज हैं और जब बात की जाए ताक्षी द स्मगलर्स वेब रिलीज की गई तो कहा जा रहा था कि ये कहानी के टक्कर में और कोई कहानी ना ही बनी ना ही लगता बनेगी, लेकिन ब्राउन यानी कि करिश्मा कपूर की ब्राउन को नियो नॉर साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर बताया गया और कोलकाता सर्च मिस्ट्री के अराउंड घुलती है। मल्टीपल सीज़न ने इसे ओटीटी रिलीज डेट दी और रिलीजिंग के बाद से लगा कि यार जहां हम लोग सोचते थे कि साल के स्टार्टिंग में रिलीज हुई ताशकारी द स्मगलर्स वेब के आसपास भी इर्द गिर्द कोई ऐसी कहानी नहीं भटकेगी, लेकिन ये तो बिल्कुल उसके साथ सेटअप पर आकर बैठ गए। क्या दोनों कहानियाँ बहुत एक दूसरे से मैच नहीं कही जाएगी, लेकिन तो एक दूसरे लेवल की कहानियाँ बिल्कुल। ये दोनों कहानियाँ देखकर और आपको पता चलेगा यार हाँ किसी भी कहानी को कम नहीं आका जा सकता। बाकी ऐसी चर्चा कर रहा हूँ उससे पहले एक और ट्रैक।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.
7: માતાજી ના હમ કહીને કહું છું કે વા ફરે વાદળ ફરે વાયરો ફરે પણ એક વાર બોલ્યા પછી મારા મિત્રો આ મિત્રો કદી ના ફરે.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात करते हैं प्रीतम और पेड्रो के बारे में, जहाँ रिव्यू आर्टिकल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्राइम, साइबर क्राइम, कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसमें अरशद वारसी, वीर हिरानी और विक्रम मासी के रोल्स में बेहतरीन कहानी उतारी गई। बात की जाए यहाँ पे सीरीज गोवा बेस्ड कॉप पेड्रो और टैक जीनियस प्रीतम की अनलाइकली पार्टनरशिप पर बेस्ड है। विक्रांत मेसी का कैरेक्टर एंटज और हैकर के रूप में हाईलाइट किया गया, तो वहीं पर वीर हनी एक्टिंग डेब्यू करते नजर आए और अर्शद का किरदार तो ओल्ड स्कूल इन्वेस्टिगेटर के रूप में आया। पॉजिटिव रिव्यूज ने सीरीज को ह्यूमर, सस्पेंस और इमोशनल स्टोरी टेलिंग का मिक्स बताया, जबकि नेगेटिव रिव्यूज ने इसे प्रीची और जेजे और स्ट्रक्चरल वीक माना है। लेकिन पॉजिटिव व्यूज ज्यादा मिलते तो कहानी को अच्छा खासा प्यार मिलता नजर आया। बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ऑन योर रेडियो 101.9।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां बात कर रहे हैं भाई तेरा स्टार, जिसका टीजर हाफिया रिलीज किया गया, जहां इस कहानी में कॉमेडी एक्शन ड्रामा का लाउड एनर्जेटिक मिक्स प्रॉमिस करती है। रघव जो है लीड किरदार में है, तो अजय सिंह का कैरेक्टर प्ले करते नजर आएंगे, जो सुपरस्टार बनने का सपना देखता है। टीजर की ओपनिंग रॉकिंग रबल आइकन सुपर अल्ट्रा फ्यूचर जैसी ओवर द टॉप लाइंस से होती है, जो फिल्म की चीकी टोन को सेट करती है। और बात की जाए तो फिल्म में संजय कपूर, चंदन रॉय, निहारिका एनम, बरखा सिंह, विकल्प मेहता, टीना देसाई और कुछ नेम्स भी एडेड है। फिल्म को विवेक बी अग्रवाल डायरेक्ट कर रहे हैं। रिलीजिंग की बात की जाए तो 30 जुलाई को इसको रिलीज किया जाने वाला है सिनेमाघरों में। इंतजार रहेगा राघव जुएल की एक और नई कहानी के बारे में, बाकी ऐसी भी चर्चा चलती रहेंगी। उससे पहले एक और खूबसूरत ट्रैक।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं इस मंथ के बॉलीवुड ट्रेंडिंग गानों के बारे में, जहाँ सबसे पहले बात की जाए बंधु 2.0 फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2, जहाँ पे गहरा हुआ और मशूका कॉकटेल 2 ये भी ट्रेंडिंग में ही बना रहा। शरारत गाने की बात कीजिए जो कि धुरंधर और उच्च लंबा कद फॉरएवर फ्रॉम वेलकम टू द जंगल ये भी ट्रेंडिंग में बना एक गाना। जैसे ही उच्च लंबा कद रिलीज हुआ वेलकम टू द जंगल की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बढ़ती नजर आई। ये चारों वो गाने जो कि इस मंथ ट्रेंड करते नजर आ रहे हैं और ये सबकी प्लेलिस्ट में नजर भी आ रहा है, साथ ही हिट भी किया। तो आप भी सुनिए गानों और उठाइए इन गानों का लुत्फ और बताइए हमारे व्हाट्सएप नंबर की इन चारों में या फिर चारों के अलावा कोई एक ऐसा जो इसमें आपको ट्रेंडिंग लगा या बहुत प्यारा लगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर। बाकी चर्चा होती रहेगी उस पर एक और ट्रैक।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: 69.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस. कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था.
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश.
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया.
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है.
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया.
6: आवारा हूँ, आवारा हूँ.
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है. तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM. कुछ हटके.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करते हैं आज इंडस्ट्री में बॉलीवुड सेलिब्रेट कर रही हैं कैटरीना का, जहाँ बॉलीवुड की वो एक्टर जिनकी खूबसूरती, ग्रेस और डांस मूव्स ने लाखों

पर राज किया। ऐसे एक्टर जिन्होंने अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और डेडिकेशन के दम पर बॉलीवुड में एक खास मुकाम हासिल किया। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने हर चैलेंज को अपनी ताकत बनाई। सिनेमा कैलेंडर में आज कैटरीना कैफ की बहुत सी चर्चाएं करने वाला, उनके कहानियों, उनके किरदारों की बहुत सी बातें। लेकिन सारी चर्चाएं करने से पहले सुनाऊंगा कुछ खूबसूरत से गाने ऑनलाइन रेडियो महारानी।

हॉट हिट्स या अनरिलीज्ड जेम्स। फिल्मी फ्लेवर में आरजे मोनिक आपको सुनाएंगे हर फिल्मी किस्सा ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों कैटरीना कैफ के बारे में, जहाँ सिनेमा के कैंट में इनकी अगर बात की जाए तो कैटरीना ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की और फिर बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआती दिनों में हिंदी भाषा उनके लिए एक लैंग्वेज थी, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत की और धीरे धीरे इंडस्ट्री की टॉप एक्टर्स में अपनी जगह बना ली। मैंने प्यार क्यों किया, नमस्ते लंदन जैसी फिल्मों में उन्होंने ऑडियंस के बीच बहुत अच्छा खासा प्यार बटोरा और पॉपुलर भी बनी। वही कैटरीना की अगर यादगार फिल्मों की बात की जाए तो वेलकम, अजब प्रेम की गजब कहानी, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी कहानी, और गानों की बात की जाए कमली और चिकनी चमेली जैसे गानों से भी उन्हें बॉलीवुड के आइकॉनिक डांस नंबर्स में गिने जाते हैं। कैटरीना की ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत ट्रैक ऑन रेडियो मारा।

0: तुम्हारा क्या काम।
1: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी की फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से कैटरीना कैफ के बारे में, जहाँ कैटरीना कैफ सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने अपना ब्यूटी ब्रांड के ब्यूटी शुरू किया जो काफी पॉपुलर हुआ। चाहे रोमांटिक फिल्म्स हो, एक्शन मूवीज या फिर डांस परफॉर्मेंस, कैटरीना ने हर जनर में अपनी अलग पहचान बनाई। आज भी उनकी प्रोफेशनलिज्म, फिटनेस और ग्रेसफुल पर्सनालिटी नए आर्टिस्ट के लिए इंस्पिरेशन मानी जाती है। मैं फिर से उनका हैप्पी वाला बर्थडे, बाकी ऐसे और भी चर्चा लेकर के आता रहूंगा, लेकिन आज नहीं, आज से मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह उनको चर्चा है। तब तक सुन रहे रेडियो महारानी 89.6 एफएम को।
2: अरे

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

0: 89.6 FM कुछ हटके।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

कभी कभी एक सिंपल स्माइल पूरी कंट्री को याद रह जाती है, और यामी गौतम की कहानी वही स्माइल से शुरू होती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल क्रश यामी गौतम की। हिमाचल की एक सीधी सादी लड़की, ना लाउड लॉन्च ना सुपरस्टार सरनेम, बस एक काम फेस, नेचुरल ब्यूटी और कैमरा फ्रेंडली इनोसेंस। शुरुआत हुई टीवी सीरियल से, स्मॉल स्क्रीन स्मॉल रोल्स, लेकिन फिर एक एड आई और पूरा इंडिया सडनली पूछने लगा ये लड़की है कौन। फेयरनेस क्रीम का वो एड यामी गौतम को घर घर फेमस कर गया। आयरनी देखो, इंडस्ट्री ने उन्हें पहले ब्यूटी के लिए नोटिस किया, लेकिन आगे जाके वही लड़की अपनी एक्टिंग से सबको सरप्राइज करने वाली थी। यामी गौतम पहले स्क्रीन पर प्रिटी लगी, फिर धीरे धीरे पावरफुल लगने लगी, और कैसे हुई उनकी एक परफेक्ट बिगिनिंग, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: ओ जनती कुड़ी

नीतू झट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

बॉलीवुड में डेब्यू सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग पहली फिल्म में ही फ्रेश एयर जैसे फील होते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। साल था 2012, फिल्म आई विक्की डोनर। आयुष्मान खुराना के अपोजिट एक सिंपल बंगाली गर्ल आशिमा रॉय। नो ओवर एक्टिंग, नो ड्रामेटिक हीरोइन एनर्जी, बस नेचुरल परफॉर्मेंस, और ऑडियंस को वही पसंद आया। यामी उस एरा की टिपिकल ग्लैमरस हीरोइन नहीं लग रही थी, वो रियल लग रही थी। सॉफ्ट वॉइस, सिंपल एक्सप्रेशंस और एक वार्मथ। फिल्म हिट हुई, क्रिटिक्स ने नोटिस किया, सबको लगा बॉलीवुड को एक फ्रेश एक्ट्रेस मिल गई है। उन्होंने एंट्री ग्लैमरस नहीं ली, कंफर्ट से मारी थी। और फिर कैसे मिला उनको प्रिटी फेस का लेबल, करेंगे इसके बारे में आगे भी बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना, आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

बॉलीवुड की सबसे डेंजरस हैबिट है, और वो है कि अगर एक्ट्रेस खूबसूरत हो तो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि बस इसकी खूबसूरती इसका टैलेंट है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं यामी गौतम की। यामी गौतम के साथ भी सेम यही हुआ, उन्हें रिपीटेडली ब्यूटीफुल हीरोइन कैटेगरी में डाल दिया गया। फिल्म्स आई, सॉन्ग्स हिट हुए, लेकिन उनके रोल्स ऑफन लिमिटेड रहे, कभी लव इंटरेस्ट, कभी सपोर्टिंग प्रेजेंस। और धीरे धीरे लोग उनकी एक्टिंग की जगह उनकी अपीयरेंस की बात ज़्यादा करने लगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, यामी कभी डेस्परेट नहीं दिखी, ना अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सी, ना अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। वो क्वाइटली काम करती रही और शायद अंदर ही अंदर वेट कर रही थी एक ऐसे रोल का जहां वो सिर्फ प्रिटी नहीं परफॉर्मर भी प्रूव हो सके। इंडस्ट्री उन्हें ब्यूटीफुल बोलती रही और वो साइलेंटली बेटर एक्ट्रेस बनती रही। और कैसे आया उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: रिड्यूस रीयूज रीसाइकिल यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

जानी ये स्विच है, बिजली बचाने के लिए इसे ऑफ करना पड़ता है।

बॉलीवुड में हर एक्टर के करियर में एक मोमेंट आता है जहां ऑडियंस सडनली रियलाइज करती है, ओह ये तो सीरियसली एक्टिंग कर सकती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं यामी गौतम की। और यामी गौतम के लिए भी ये मोमेंट आया था, और ये मोमेंट था फ्रॉम द मूवी अ थर्सडे। नो ग्लैमरस हीरोइन रोल, नो डांसिंग सॉन्ग्स, बस एक इंटेंस वुमेन होल्डिंग अ सिटी हॉस्टेज। और यामी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म थी, वॉइस, एक्सप्रेशंस, स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ अलग था। ऑडियंस शॉक हो गई थी, ये वही यामी गौतम है? सबके मन में यही सवाल था। और वही एक्टर की बिगेस्ट विक्ट्री होती है जब ऑडियंस आपको दोबारा डिस्कवर करे। उसके बाद आर्टिकल 370 जैसी फिल्म्स ने भी प्रूव किया कि यामी सिर्फ स्क्रीन डेकोरेशन नहीं है, वो पूरी की पूरी फिल्म कैरी कर सकती है। उन्होंने लाउड कमबैक नहीं किया, उन्होंने परसेप्शन चेंज कर दिया। और इसीलिए कभी कभार ऐसा लगता है कि यामी गौतम डिफरेंट है, और वो डिफरेंट क्यों है करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

आज के टाइम में जहां हर सेलिब्रिटी कॉन्स्टेंटली विजिबल रहना चाहता है, यामी गौतम का काम रहना ही उनकी इंडिविजुअलिटी बन गई। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं यामी गौतम की। यामी गौतम ने इंडस्ट्री को चेज नहीं किया, उन्होंने बस कंसिस्टेंटली काम किया और धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कभी कभी साइलेंस भी स्पॉटलाइट बन सकती है। वो उन एक्ट्रेसेस में से नहीं है जो हर वक्त हेडलाइंस में ही रहना चाहती हैं, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आती हैं ऑडियंस उन्हें सीरियसली लेती है, और यही पहचान होती है एक अच्छे एक्टर की। ना डेली ड्रामा, ना फेक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, उनकी वाइब ही अलग है। वो अप्रोचेबल लगती हैं, ग्राउंडेड लगती है, और स्क्रीन पर भी वो ओवर परफॉर्म नहीं करती, इसीलिए उनके इमोशनल सीन्स बिलीवेबल लगते हैं। यामी गौतम का करियर एक इंटरेस्टिंग रिमाइंडर है, कभी कभी स्लो ग्रोथ भी पावरफुल होती है। हर एक्टर को ओवरनाइट स्टारडम नहीं मिलता, कुछ लोग ग्रेजुअली ऑडियंस का रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, और यामी उन्हीं एक्टर्स में से एक हैं। आज जब वो स्क्रीन पर आती हैं तो सिर्फ प्रिटी नहीं लगती, कॉन्फिडेंट लगती हैं, कंट्रोल्ड लगती हैं, कंप्लीट एक्ट्रेस लगती हैं। यामी गौतम ने इंडस्ट्री को चेज नहीं किया, उन्होंने बस कंसिस्टेंटली काम किया और धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज कर दिया कि कभी कभी साइलेंस भी स्पॉटलाइट बन जाता है। तो ये थी कहानी यामी गौतम की। आपको ये पूरी की पूरी कामयाबी की उड़ान की कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। नंबर है हमारा 9654896896। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आप सभी से दोबारा 5 से 8 सोमवार से शुक्रवार शाम को अपने शो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मेरे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM कुछ हटके।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

गाना है फ्रॉम द मूवी लव आजकल और इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूँ गीत। और आज फिर से एक और कहानी लेकर आई हूँ, एक बिजनेस टाइकून की कहानी जहाँ सक्सेस की चमक के पीछे छुपी होती है एक लंबी थका देने वाली कहानी। सोचिए एक बच्चा सिर्फ 4 साल का जिसकी जिंदगी एक डिजीज की वजह से रुक जाती है। डॉक्टर बोल देते हैं नीचे का हिस्सा जिंदगी भर काम नहीं करेगा। बचपन से ही बैसाखियों का सहारा, लोगों की सिंपैथी और सोसाइटी का एक फिक्स लेबल, ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये कहानी है सपने देखने की, हिम्मत करने की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो कभी फोटोकॉपी मशीन के सामने बैठकर दिन गिन रहे थे और आज जिनका बिजनेस हजारों करोड़ के आसपास घूम चुका है। आज जब एक रिटेल ब्रांड सिक्योरिटी गार्ड की जॉब एड की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, मीम्स बन रहे हैं, तब शायद हमें ये भी पूछना चाहिए इस ब्रांड के पीछे का दर्द क्या था, इस सफलता के पीछे का गिरना कितना गहरा था। पर अभी मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ, गाने के बाद फिर से लौटूंगी और बताऊंगी इनकी कहानी आपको, जिनका नाम जानते ही आप तो कहने वाले हैं ओह ये इनकी कहानी है। तो वक्त है गाने का, गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जी।

वेलकम अगेन टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत और अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपसे एक कहानी की बात की थी। एक बच्चा, एक डिसेबिलिटी और एक सपना जिसका एंड किसी को नहीं पता था। अब वक्त आ गया है उस कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर से आपको मिलाने का। नाम है रामचंद्र अग्रवाल और शायद आप ये नाम पहले ना जानते हो, लेकिन जो ब्रांड इन्होंने बनाया उसे आपने जरूर देखा होगा। मोहल्ले के पास, बस स्टैंड के सामने या हाईवे के कॉर्नर पर विशाल मेगा मार्ट। आज विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड के एक जॉब एड की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लोग मीम्स बना रहे हैं, क्वालिफिकेशंस पर हंसी उड़ा रहे हैं, पर जब हम सिर्फ मीम देखते हैं हम कहानी भूल जाते हैं। रामचंद्र अग्रवाल की कहानी सिर्फ एक फाउंडर की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम के खिलाफ चलने वाले आदमी की कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में ही बता दिया गया था तुम नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे, लेकिन उन्होंने नॉर्मल लाइफ का डेफिनेशन खुद लिखा। न सिंपैथी चाहिए, न शॉर्टकट्स, बस एक चीज, अपना काम। और वही सोच आगे जाकर विशाल मेगा मार्ट जैसे मास रिटेल मॉडल की फाउंडेशन बनी। तो अभी हम इनके बचपन में डाइव करने वाले हैं, इनकी फैमिली के बारे में बातें करेंगे और मेंटल स्ट्रेंथ की बात करेंगे जो इन्होंने स्कूल के दिनों में डेवलप की थी। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

Once again, welcome back. You are listening to Radio Maharani 89.6 FM. कुछ हटके शो है Business Unplugged और मैं आपके साथ गीत हूँ. कभी कभी कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा सक्सेस वाला नहीं होता, वो होता है बचपन. रामचंद्र अग्रवाल जो कि विशाल मेगा मार्ट के फाउंडर थे. रामचंद्र अग्रवाल का बचपन नॉर्मल नहीं था. 4 साल की उम्र में पोलियो ने इनकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दी थी. डॉक्टर ने साफ कहा, नीचे का हिस्सा काम नहीं करेगा. और इस एक सेंटेंस का मतलब था ना दौड़, ना खेल, ना नॉर्मल स्कूल लाइफ. बैसाखियों के साथ चलना, लोगों की नजरों का बोझ उठाना और हर रोज खुद को समझाना, मैं कम नहीं हूँ. फैमिली सिंपल थी, मिडिल क्लास, ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन एक चीज थी, इज्जत. इनके पेरेंट्स ने कभी इन्हें ये फील नहीं होने दिया कि वो किसी से कम है. एक्सपेक्टेशंस क्लियर थी, पढ़ना है, समझना है और अपनी जगह खुद बनानी है. स्कूल के दिन इनके लिए मेंटल ट्रेनिंग जैसे थे. हर छोटी चीज मेहनत मांगती थी. बेंच तक पहुंचना, स्टेयर्स चढ़ना, असेंबली अटेंड करना. और इसी स्ट्रगल ने इनके अंदर एक चीज डेवलप की, पेशेंस. एडुकेशन पूरी की, डिग्री ली, फिर जॉब. पर ऑफिस के हर दिन के साथ इनके अंदर एक सवाल ग्रो होता गया, क्या मैं जिंदगी भर किसी और के अंडर काम कर पाऊंगा. और इस प्रॉब्लम के साथ जॉब मिलना बहुत मुश्किल था और जॉब छोड़ देना लोगों को बेवकूफी लगता था. पर रामचंद्र अग्रवाल को अंदर से पता था, मुझे अपना काम करना है. और फिर आया उनका पहला कदम, छोटा सा, रिस्की सा, और एक फोटोकॉपी मशीन के साथ शुरू हुआ ये सफर. और ये सफर क्या था ये मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इस गाने के बाद. गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी. शो है बिजनेस अनप्लग्ड.

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड। मैं बात कर रही हूँ विशाल मेगामार्ट के फाउंडर रामचंद्र अग्रवाल की, जिन्होंने एक छोटे से फोटोकॉपी शॉप उधार के पैसे से ली, कोई गारंटी नहीं। रोज सुबह दुकान खोलना, मशीन का शोर और शाम को गिनती, कितना कमाया कितना बचाया। एक साल तक ये सिलसिला चला, पैसे आ रहे थे लेकिन दिल नहीं लग रहा था। रामचंद्र अग्रवाल को समझ आ गया था सिर्फ काम चलाना मेरा गोल नहीं है। फिर इन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस ट्राई किया, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, मार्जिन सब समझना, लेकिन नतीजा लॉस। यहाँ बहुत लोग रुक जाते हैं, कह देते हैं बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चीज सीख ली थी, फेलियर फीडबैक होता है। उसके बाद फैब्रिक बिजनेस, कपड़ों का काम, रिटेल की रियल अंडरस्टैंडिंग यहीं से आई। कस्टमर का बिहेवियर, प्राइस सेंसिटिविटी और स्टॉक मैनेजमेंट। 15 साल कलकत्ता में ग्राइंड, दिन रात का काम, और फिर भी अंदर एक आवाज थी, अगर इतना कर लिया है तो कुछ बड़ा क्यों ना करें। और फिर लिया गया एक सबसे डेयरिंग डिसीजन, सब छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होना, एक नया शहर, जीरो सपोर्ट। और अभी उसी सपोर्ट के बारे में बात करूंगी, लेकिन गाना सुन लेते हैं। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जिंदगी में बस यही काम डाउन रहना बहुत जरूरी है। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ विशाल मेगा मार्ट के फाउंडर रामचंद्र अग्रवाल की। दिल्ली में इन्होंने देखा मिडिल क्लास को ऑप्शंस चाहिए पर अफोर्डेबल, मॉल कल्चर एलीट के लिए था। इन्होंने सोचा व्हाई नॉट मास रिटेल। यहीं से विशाल मेगा मार्ट का आइडिया निकला, स्टोर खुला, रिस्पॉन्स मिला और फिर एक के बाद एक स्टोर। टीम बनाना इजी नहीं था, लोग डाउट करते थे पर रामचंद्र अग्रवाल का विजन क्लियर था। सिटीज जुड़ती गईं, स्टोर्स बनते गए, 414 सिटीज, 2007 आईपीओ, 2000 करोड़ वैल्यूएशन, मीडिया कवरेज, सक्सेस का नशा और यहीं से कहानी का सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है। फास्ट एक्सपेंशन, गलत फाइनेंशियल डिसीजन और फिर 2008 का मार्केट क्रैश, लोन का प्रेशर 750 करोड़, सिस्टम हिल गया, कंपनी गिरने लगी। 2011 में वो मोमेंट आया जब इन्होंने अपनी ही बनाई हुई कंपनी को 70 करोड़ में बेच दिया। सोचिए, ये बिजनेस लॉस नहीं था, ये आइडेंटिटी का लॉस था। यहीं पर ज्यादा कहानियां खत्म हो जाती हैं लेकिन रामचंद्र अग्रवाल की नहीं। और कैसे इन्होंने कमबैक किया ये मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड, मैं गीत हूँ। और कभी कभी जिंदगी हमें वहाँ ले जाकर खड़ा कर देती है जहाँ से सिर्फ दो रास्ते दिखते हैं, या तो चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया जाए या फिर खुद को दोबारा डिफाइन किया जाए। रामचंद्र अग्रवाल के लिए विशाल मेगामार्ट को बचाना सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, वो एक इमोशनल सर्जरी थी। सोचिए, जिस ब्रांड को आपने अपनी सोच से, अपनी मेहनत से, अपनी पहचान से बनाया हो, उसे खुद अपने हाथों से छोड़ देना, 70 करोड़ में कंपनी बेचना। नंबर्स के हिसाब से लॉस था, लेकिन जो सबसे बड़ा लॉस था वो था आइडेंटिटी का। लोग जो कल तक आपको रिटेल किंग कह रहे थे, आज चुप थे। फोन कम बजने लगे, मीटिंग्स खत्म होने लगी। यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को खत्म मान लेते हैं, लेकिन रामचंद्र अग्रवाल ने खुद से एक सवाल पूछा, मेरे पास क्या नहीं बचा? जवाब आया, पैसे नहीं बचे, ब्रांड नहीं बचा, पर एक्सपीरियंस जिंदा है, और एक्सपीरियंस सबसे महंगा एसेट होता है। इन्होंने रियलाइज किया कि विशाल का डाउनफॉल का रीजन आइडिया नहीं था, एग्जीक्यूशन का ओवर कॉन्फिडेंस था। इस बार अप्रोच बदली, इस बार ग्रोथ स्लो रखी, इस बार नंबर से पहले डिसिप्लिन आया, और वहीं से शुरू हुआ V2 रिटेल। नया नाम, नया स्ट्रक्चर, पर वही कोर अंडरस्टैंडिंग, इंडियन मिडिल क्लास। नो फ्लैशी ड्रीम्स, सिर्फ सस्टेनेबल बिजनेस, स्टोर बाय स्टोर, सिटी बाय सिटी, कंट्रोल ग्रोथ। आज V2 रिटेल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और आज उसकी मार्केट वैल्यू 6,500 करोड़ से ज्यादा। पर इस कहानी का सबसे पावरफुल पार्ट ये नंबर नहीं है, पावरफुल पार्ट ये है कि एक आदमी जो बचपन से बैसाखियों के साथ चला, जो जिंदगी भर लोगों के डाउट्स उठाता रहा, जो एक बार सब कुछ खो चुका था, उसने फिर से खुद को खड़ा किया। और यहीं से नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ा लेसन निकलता है, फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हो वो आपको डिफाइन करता है। अगर आप अपना स्टार्टअप ब्रांड करने के बारे में सोच रहे हो, और अगर आप लोन, प्रेशर, सेल्फ डाउट से घिरे हो, तो रामचंद्र अग्रवाल की कहानी आपको एक बात याद दिलाती है, एंड तब होता है जब आप खुद मान लेते हो। डिसेबिलिटी एक्सक्यूज नहीं होती, बैकग्राउंड लिमिटेशन नहीं होती, और एज कभी बैरियर नहीं होती। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट का गेम नहीं होता, बिजनेस पेशेंस, सेल्फ बिलीव और लॉन्ग विजन का टेस्ट होता है। आज विशाल मेगामार्ट का नाम शायद नए लोग चला रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की सोच अभी भी जिंदा है। और V2 रिटेल सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये एक स्टेटमेंट है, मैं गिरा था पर खत्म नहीं हुआ था। और इसी थॉट के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मैं हूँ गीत, और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड, और जहाँ कहानियाँ सिर्फ सक्सेस की नहीं होती, दोबारा खड़े होने की होती है। याद रखिए, अगर आप जिंदा हैं तो आपका बिजनेस ड्रीम भी जिंदा है। और मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके। कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।

इंडिया का सबसे हॉन्टेड फोर्ट, जहां सूरज डूबते ही रहना मना है। पर एक सवाल, क्या भानगढ़ सच में भूतों का घर है, या फिर हम सच से ज्यादा डर से डरते हैं? 89.6 FM पर मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ, और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा। और आज के सफर में हम जा रहे हैं भानगढ़ फोर्ट। वो कहा है कि कुछ जगहें डराती नहीं, बस सच बोलती है, और सच हमेशा आसान नहीं होता। भानगढ़, आखिर कहाँ है ये फोर्ट और क्यों फेमस है? भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, अरावली की पहाड़ियों के बीच। कहा जाता है ये फोर्ट 17th सेंचुरी में बना राजा माधो सिंह के द्वारा, जो कि अंबर के महाराजा मान सिंह के भाई थे। कहा जाता है कि एक समय पर भानगढ़ हस्ता खेलता शहर था। यहाँ मंदिर, बाजार, महल सब कुछ हुआ करता था, पर जो शहर कभी शोर से भरा था, आज वो सिर्फ खामोशी से भरा है।

अगर इस फोर्ट की बात की जाए तो भानगढ़ का एक प्लानिंग लिंक मिलता है। भानगढ़ को टाउन प्लानिंग रूल्स के हिसाब से बनाया गया था। मंदिरों की ऊंचाई, घर की दिशा और महल की पोजीशन, सबका एक नियम था। कहा जाता है कि एक शर्त थी, राजमहल की छाया शहर पर नहीं गिरनी चाहिए। और बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी। भानगढ़ फोर्ट की पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

भानगढ़ फोर्ट की कहानी घूमती है तांत्रिक और राजकुमारी के बीच। आखिर क्या था ये कनेक्शन? 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। कल्चर कारवा का आज का सफर हमें ले आया है भानगढ़। कहा जाता है लोक कथाओं के मुताबिक भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर थी। तभी एक तांत्रिक सिंघिया उस पर मोहित हो गया। बस फिर क्या था, तांत्रिक ने तेल में जादू मिलाया ताकि राजकुमारी उसके वश में आ जाए। पर राजकुमारी ने पहचान लिया और तेल का पात्र पत्थर पर फेंक दिया और तभी ये पत्थर जाकर तांत्रिक पर गिरा और तांत्रिक ने मरते मरते भानगढ़ को एक श्राप दे दिया। वो कहा है कि मोहब्बत जब जबरदस्ती बन जाए तो बर्बादी बन जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भानगढ़ की शराब की ये सिर्फ पहली कहानी है। एक और कहानी मिलती है जहां कहा जाता है कि भानगढ़ को साधु का श्राप भी मिला। ये कहानी बताती है कि एक तपस्वी साधु वहां रहता था। जब महल की ऊंचाई बढ़ी और छाया शहर पर पड़ने लगी, साधु ने श्राप दिया, ये नगर उजड़ जाएगा। लेकिन क्या वाकई श्राप से भानगढ़ उजड़ गया? आखिर हिस्ट्री क्या कहती है, ये जानने के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पूरा इतिहास है। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। भानगढ़ के उजड़ने की कहानी सिर्फ शराब पर नहीं बल्कि हिस्ट्री पर भी आधारित है। आखिर हिस्ट्री क्या कहती है? अब आते हैं इस सच पर। हिस्टोरियंस कहते हैं भानगढ़ का पतन हुआ 18th सेंचुरी में। असली वजह की बात की जाए तो कहा गया कि राज्य पर मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ। एक और वजह बताई गई है इकोनॉमिक डिक्लाइन, साथ ही कहा गया कि राजपूत पावर का कमजोर होना। और इतना ही नहीं, साथ ही ये भी अनुमान लगाया गया कि पानी और रिसोर्सेज की कमी से भानगढ़ उजड़ गया। और कई लोग तो ये भी कहते हैं जैसे कुलधरा गांव रातों रात खत्म हो गया। वैसे ही भानगढ़ में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर ने लोगों को वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। पर सवाल आज भी वही है, क्या भूत आई थी या जिंदगी चली गई? और बस इसी कहानी की वजह से आज भी ASI और एंट्री बैन का सच लोग पता लगा रहे हैं। भानगढ़ फोर्ट में आज भी ASI ने शाम के बाद एंट्री मना की है, पर रीजन पैरानॉर्मल नहीं, सेफ्टी है। कहा जाता है अंधेरा, जंगली जानवर और ब्रोकन स्ट्रक्चर्स, इन सब से किसी को नुकसान ना हो इसलिए भानगढ़ में रात को जाना सेफ नहीं और एंट्री बैन है। क्योंकि यहाँ ये रूल्स डर की वजह से नहीं बल्कि हादसे की वजह से है। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि फिर डर क्यों लगता है? इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

इंसान का दिमाग खामोशी को कहानी बना देता है। 89.6 पर मैं हूँ आज अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। वो कहा है कि डर अक्सर साय से नहीं होता, डर होता है इस बात से कि सब कुछ खत्म हो सकता है। भानगढ़ फोर्ट की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि आज के समय भानगढ़ एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। दिन में यहाँ हिस्ट्री की क्लासरूम है और रात को कहानियों का जंगल। बात तो सही कही गई है कि भानगढ़ हॉन्टेड हो या नहीं, पर इसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। वो कहा है कि कुछ शहर सिर्फ साये से नहीं मरते, कुछ शहर बस यादों से जिए जाते हैं। तो ये था भानगढ़ फोर्ट, डर का किस्सा या इतिहास का सबक। कल्चर कारवा का आज का सफर आखिर हमें ले ही आया भानगढ़ की तरफ, जहां हमने जाना इतिहास और किस्से कहानियों का सच। अब फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए सफर के साथ, एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: क्या आप लोग भी मेरी तरह हैं? नहीं, मेरी तरह इसलिए क्योंकि मैं तो बारिश का इंतजार कर रहा हूँ और इतनी ज़्यादा ह्यूमिड वाली गर्मी में बस पानी पीता जा रहा हूँ. और शाम हो चुकी है, वक्त तो पानी का नहीं है, वक्त तो है चाय का. हाँ, वो जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, वक्त चाय का हो चुका है. तो मैं ज़रा अपने चाय की प्याली अंदर लेकर आता हूँ और आप लोगों का स्वागत करता हूँ रेडियो महारानी पर. बस मैं यूँ गया और यूँ आया, आप लोगों के लिए गाना चला रहा हूँ. गाना है करण औजला की आवाज़ में, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर.
5: East Punjab.

0: पापी पाप कुलचा।
1: सिर्फ 3 दिन बारिश हुई थी, वो भी लास्ट वीक। सोचो, लास्ट थर्सडे से एक बूंद नहीं पड़ी है फरीदाबाद के ऊपर। हाँ, मैं जानता हूँ कि बल्लभगढ़ साइड थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, बट हमारी साइड तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। यानी कि बल्लभगढ़ से जब फरीदाबाद की तरफ और आते हो तो बारिश की नामो निशान ही नहीं है। स्वागत है जी सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। गुरुवार की शाम है, गौरव मेरा नाम है, आप सभी का स्वागत करता हूँ तहे दिल से। एंड बारिश का कुछ आलम ऐसा है कि लग नहीं रहे आसार कुछ भी, और लग भी रहे हैं आसार, क्योंकि कभी तो मौसम अच्छा हो जाता है, कभी तो मौसम बुरा हो जाता है। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में करेंगे बात, और अगले 3 घंटों के लिए मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ। और जो भी लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ, उनको बता दूं कि 3 घंटों में हम लोग खूब सारी बातें करने वाले हैं, दिल्ली से लेके फरीदाबाद तक और फरीदाबाद से लेके ऑल ओवर इंडिया तक सारी बातें करेंगे। और इसी बीच मेरे सामने एक खबर आती है, और वो खबर कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग थी मेरे लिए। बहुत सारी बेडशीट्स गायब हो गई है। कहाँ से? रेल से, मतलब ट्रेन के अंदर से, जो स्लीपर कोच होते हैं उनके अंदर से, फर्स्ट एसी सेकंड एसी से भी गायब हुए हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा डेटा है। तो करेंगे इसके बारे में बात। और SIR के फॉर्म अभी तक अगर नहीं भरे हैं तो जल्दी से भर लीजिए और सबमिट कर दीजिए, क्योंकि आखिरी डेट नज़दीक है। वैसे डेट्स एक्सटेंड की गई थी, बट स्टिल मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से जल्दी SIR के फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और हाँ, इसी के साथ साथ साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और फरीदाबाद में भी साइबर जो ये साइबर स्कैमर्स है ना, वो अपने नए नए शिकार ढूंढ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ सतर्क रहिए, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए। अब देखो, फरीदाबाद की मैंने बात करी है ना, तो फरीदाबाद से रिलेटेड ही गाना चलाऊंगा। यानी कि फरीदाबाद के एक रैपर का गाना है ये, जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, स्क्वायर MC, मतलब MC स्क्वायर का गाना ये, लाडो, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं सुनो।
0: इंस्टार्ट
1: कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो हम चलते हैं।
1: हेलो सुन के जाओ।
0: लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर नॉट

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं मैं ही वो जड़ तो नहीं जिसकी वजह से बारिश नहीं आ रही, क्योंकि कहीं पर भी जाता हूँ वहां पर बारिश रुक जाती है। और मुझे ऐसा लगता है फरीदाबाद से बाहर जाना पड़ेगा मुझे घूमने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं घूमने गया था फरीदाबाद से बाहर तो फरीदाबाद में बहुत अच्छी बारिश हुई थी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड फरीदाबाद, कैसे हो आप सब? पूरा एक हफ्ता हो गया है और अभी वो लगान वाली फीलिंग आ रही है मुझे, आप लोगों को भी आ रही होगी नो डाउट, जब घनन घनन घिर घिर आए बदरा, सब लोगों ने डांस किया था ना, मुझे लग रहा है हम लोगों को भी वो डांस करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ही जाके बादल बरसेंगे, और बरसेंगे भी या फिर नहीं बरसेंगे ये तो खैर वक्त बताएगा। और इस पर मौसम विभाग क्या कह रहा है, मौसम विभाग कह रहा है बस एक दिन और, यानी कि कल, कल मीन्स वीकेंड पर आप लोगों को उसके बाद ठंडक मिलनी शुरू हो जाएगी। देखो कल वैसे बारिश की चांसेस बहुत कम है, बट कुछ नहीं पता, ये मानसून की बरसात है, सावन का मौसम है और कभी भी वक्त पलट जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, तो कभी भी आसमान से वर्षा हो सकती है। अब देखो मैं यहाँ पर एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, ह्यूमिडिटी जो है ना वो अराउंड 50% है, तो आप लोगों को इस ह्यूमिडिटी से बच के रहना है। ह्यूमिडिटी वाली जो गर्मी होती है वो ज़्यादा हानिकारक होती है। एक्चुअली में होता क्या, देखो हम लोग जब नॉर्मल डेज में गर्मी झेल रहे हैं तब तो हमारा पसीना निकलता है, हवा चलती है, सूख जाता है पसीना, बट इस मौसम में हवा भी भारी हो जाती है, वो चलती नहीं इतनी ज़्यादा, और फिर उसकी वजह से पसीना नहीं सूख पाता तो बॉडी के अंदर हीट ट्रैप्ड रह जाती है और उसकी वजह से तबीयत खराब हो सकती है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखिए और आने वाले कुछ दिन में हम लोगों को मौसम अच्छा मिल जाएगा। वैसे इसकी कोई 100% गारंटी नहीं, बट स्टिल मौसम विभाग का कहना है कि हाँ, कूलिंग इज एक्सपेक्टेड ओवर द नेक्स्ट 5 डेज। और अगर आज की बात करें, आज टेम्परेचर 39 तक गया था, बट इट वॉज फीलिंग एज इफ 46 डिग्री सेल्सियस। तो यार गर्मियों की तो बात हो गई, बट सोचो सर्दियों में जब ये धूप के लिए हम तरसते हैं तब धूप नहीं मिलती, बट अब इसका सोल्यूशन आ गया है, आप जहाँ चाहोगे वहाँ आपको धूप मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सभी के लिए ये गाना।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक यूआई का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: तन पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

सर्दियों में अक्सर हम लोग एक चीज को तरसते हैं, पहली तो है साफ हवा और दूसरी चीज भी है, मतलब दो चीजों को तरसते हैं, दूसरी है साफ साफ वाली धूप, मतलब बिल्कुल जो एग्जैक्ट वाली पड़ती है ना वो वाली धूप। मगर क्या हो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस बार शायद शायद है, प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग अपनी मर्जी से अपने घर पे धूप मंगवा सकते हो। नहीं नहीं, वो घर पे जलाने वाली धूप नहीं बोल रहा मैं, सूरज की रोशनी बोल रहा हूँ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक कंपनी है, उसका नाम है रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल। अब इस कंपनी को ना अमेरिका ने एक सैटेलाइट लॉन्च करने की परमिशन दे दी है। अब इस सैटेलाइट में क्या होगा, तो इस सैटेलाइट में ये एक्चुअली में एक 60 फीट का कॉनकेव मिरर भेज रहे हैं। अब ये कॉनकेव मिरर क्या करेगा, वो डायरेक्ट सूरज से रोशनी लेगा और फिर आपको जहाँ पर चाहिए वहीं पर एडजस्ट करके वो रोशनी वहाँ पर दे दी जाएगी। बट द पॉइंट इज, ट्विस्ट है यहाँ पर, ये वो वाला नहीं ऑगी एंड द कॉकरोचेस में जैसे कि बिल्ले का घर सूखा है बाकी सब जगह बारिश हो रही है, ऐसा नहीं है। आप लोगों के घर पर रोशनी नहीं पड़ेगी, टोटल 5 किलोमीटर के रेडियस में बारिश नहीं, मतलब माफ कीजिए बारिश नहीं, धूप होगी। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट यही कि अगर बादल होंगे तो फिर आपके घर तक वो रोशनी नहीं पहुँच पाएगी। बट द थिंग इज कि अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो गई तो सोचो जरा कि आपको जब मर्जी धूप मिल सकती है, मतलब रात के टाइम पे भी आपको धूप मिल सकती है, एंड आई एम नॉट जोकिंग। तो ये अभी अपना सैटेलाइट भेजने वाले हैं और फिर उसके बाद ये ट्रायल शुरू कर देंगे, और जब ट्रायल शुरू कर देंगे फिर उसके बाद ये लोग इसमें कुछ चार्जेस भी लगाएंगे, और वैसे भी अमेरिकन कंपनी है तो थोड़ा तो महंगा होने ही वाला है। बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ की खुशी है कि देखो सर्दियों में हम लोग धूप को बहुत ज़्यादा तरसते हैं, तो क्या पता इसके थ्रू हमारे घर में धूप भी आ जाए। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए एक पुराना वाला गाना लेकिन नए अंदाज में।

0: बार का।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

देखो वी आर इंडियंस एंड ये बात हम सबको अच्छे से पता है, और हम सबको एक और बात अच्छे से पता है कि हम लोग, मैं मानता हूँ कि 40% लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ में लापरवाही ज़रूर करते होंगे कभी ना कभी, और ऐसी लापरवाही और देरी भी करते हैं किसी किसी चीज़ों में, जैसे कि SIR के फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं किए लोगों ने। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। 14 जुलाई डेट थी, फिर उसके बाद सरकार ने बोला चलो कोई नहीं, हमें पता है कि हम लोग लेट लतीफ हैं, 14 को एक्सटेंड करके 24 कर दिया गया, और अभी भी लोग बहुत कम आ रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने SIR के फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर लीजिए और सबमिट कीजिए, और अगर आपने भर लिए है ऑलरेडी तो सबमिट कब करोगे, करवाइए उसे सबमिट अपने BLO के पास। और जिन्होंने अभी तक कलेक्ट ही नहीं करे हैं तो देखो आपके घर पे कोई डिलीवर करने नहीं आएंगे अब, क्योंकि जब उन्होंने डिलीवर करना था तब उन्होंने डिलीवर किया, और अब आपको अपने BLO से कलेक्ट करना पड़ेगा अपना फॉर्म। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको उस फॉर्म को लेना है, आप अपने BLO से जानकारी लोगे वो भी खुद बता देंगे, क्योंकि देखो जहाँ पर हमारी BLO थी उन्होंने मेरी तो बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, एंड आई नो आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वो फॉर्म फिल करने में। तो जाइए, पेन लेके जाइए अपने साथ और अपनी फोटोग्राफ और साथ में एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ तो लेके जाइएगा, और वहाँ पर फॉर्म फिल करके सबमिट भी कर दीजिए। तो जल्दी से जल्दी SIR का फॉर्म सबमिट कीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी आगे आने वाले टाइम में परेशानी ना हो। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर एक किशोर कुमार की आवाज़ में गाना चला रहा हूँ, बहुत पुराना है बट गाना अच्छा है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल।

कैसा लगा ये वाला मैशअप? ये गाना काफी अच्छा था और इसी गाने के साथ स्वागत है सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। अभी मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि एक सीरियस कंसर्न है। आई नो आप में से किसी ने भी ये चीज नहीं करी होगी, बट भगवान न करे कोई भी हमारे आसपास को कोई इंसान करे ये चीज। एक्चुअली मैं बेडशीट चोरी हो रही है घर से, नहीं ट्रेन के अंदर से। और ये जो ट्रेन के अंदर से बेडशीट चोरी हो रही है ना, इसकी वजह से जो एक बेडशीट चेंज करता है ना, उसकी सैलरी से 300 रुपये भी कट रहे हैं, कोच अटेंडेंट जैसे कहते हैं। और जनवरी 2022 से लेके मई 2027 तक 1.27 करोड़ बेडरोल आइटम्स चोरी हो चुके हैं। अब ये किसी चोर ने चोरी नहीं करी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने टिकट बुक करवाई थी, जिन्होंने सीट बुक करी थी और फिर उसके बाद वो अपनी चादर को अपने साथ लेके चले गए अपने घर। आई डोंट नो व्हाई दिस इज द लैक ऑफ सिविक सेंस। अब जिस देश में हम लोग रह रहे हैं उस देश के अगर लोग ऐसा करेंगे तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है ना, पता है ना आप लोगों को। बता दूं आपको, एक अटेंडेंट है, उन्होंने दावा किया है कि देखो जितने भी बेडशीट चोरी हुई है तो उसके 300 रुपये पर चादर मेरी सैलरी में से काट दिए जाते हैं। उसका कहना है कि मेरे 3000 रुपये पर मंथ काट रहे हैं लोग। बट अब यहाँ पर रेलवे भी सामने आया, रेलवे ने बोला देखो जो ये अटेंडेंट है ये थर्ड पार्टी कंपनी को हम लोग जिम्मेदारी देते हैं, तो एजेंसी की जिम्मेदारी होती है इनको पैसे देना और पैसे ना देना, तो ये गवर्नमेंट रोल के अंडर नहीं आते। बट द पॉइंट इज कि चोरी हो ही क्यों रही है, और पता है क्या, ये चोरी ना बहुत बड़ी समस्या है। और ये चोरी कोई चोर नहीं कर रहा, मैं अगेन यही बात बोलूँगा। तो चोरी से कितना नुकसान हो रहा है करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

नंबर बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, 104,51,00,000। और ये कोई नंबर नहीं है, रुपए की बात कर रहा हूँ मैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। जनवरी 2022 से लेके मई 2026, लगभग 4 सालों में यात्रियों ने, चोरों ने नहीं, यात्रियों ने एसी कोच, स्लीपर कोच और फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी सबको इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, 1,27,00,000 से भी ज़्यादा के पेट्रोल के सामान चुराए हैं। और इसमें 46,00,000 तो सिर्फ तौलिए हैं। सोचो, तौलिए तक चुरा के ले जा रहे लोग। अब तौलिए के अलावा 41,00,000 बेडशीट है, जो चादर है जो नीचे बिछाई जाती है, जो ओढ़ने की है वो अलग चीज़ है। और 13,00,000 कंबल चोरी किए गए हैं। सर्दियों में कंबल चुरा के ले जाके क्या कर लोगे आप? आप जो पैसे भर रहे हो वो आप सुविधा के लिए भर रहे हो, आप चोरी करने के लिए नहीं भर रहे हो। आप जो सुविधा अवेल कर रहे हो वो आप अपने घर नहीं ले जा सकते। आपको जो खाना मिलता है सिर्फ वही खा सकते हो, प्लेट थोड़ी ना ले जाओगे। खैर, वो तो डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं, बट स्टिल। और यहाँ पर अगर मैं और बात करूँ तो 23,50,000 तकियों के कवर और 2,50,000 तकिए गायब हो चुके हैं। और ये सारी जानकारी एक RTI के थ्रू जवाब में सामने आई। अब लोगों के बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में जो कि टिकट बुक करके भी ये सब हरकत करते हैं। तो डोंट यू थिंक इट्स लैक ऑफ सिविक सेंस? तो करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर इस गाने के बाद जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है इसको थोड़ा लाउड कर दूंगा, और वापस आकर बात करते हैं सिविक सेंस के बारे में। और आपकी क्या ख्याल है ये भी बताइएगा जरूर। नंबर वही है 9654896896।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

आपने अगर ट्रेन से ट्रैवल किया है तो आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन के अंदर टॉयलेट सीट के पास एक मग होता है, उसको भी चेन से बांधा जाता है। आप समझ आ रहा है क्यों बांधा जाता है? क्योंकि कई लाख रुपए की चोरी हो चुकी है रेलवे से। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। आई डोंट नो व्हाई हम लोग कभी कभार पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझने लग जाते हैं। और चलो, प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर आप समझ रहे हो तो उसकी देखभाल ज़्यादा करनी चाहिए, ना कि चुरा के घर ले जाना चाहिए। और ऐसा ही हो रहा है, बेड रोल्स चोरी हो रहे हैं, बेडशीट चोरी हो रही है, तकिए तौलिए सब चोरी हो रहे थे। और इसी के साथ साथ अगर सिविक सेंस की बात करें तो एक शख्स का मैसेज आता है मेरे पास, राहुल नाम बता रहे हैं अपना, कह रहे हैं कि हमारे घर के आसपास दो डस्टबिन लगे थे, सरकार ने लगाए थे, वो दोनों डस्टबिन गायब हो चुके हैं। सर आप ये बता रहे हो, मैं खुद से बताता हूँ, मैंने अपने घर के बाहर गायों के पानी भरने के लिए एक छोटा सा गमला रखा था जिसमें गाय के लिए पानी भरता था ताकि गाय आके उसमें से पानी पी सके, कोई वो भी उठा के ले गया। सोचिए ज़रा, और अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोगों से। और यहाँ पर ये किसी एक इंसान की बात नहीं है, हमेशा 10 से कम 6 लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझने लग जाते हैं और वहाँ से चीज़ें उठा के ले जाना वो गलत नहीं समझते। तो इसके बारे में आपकी भी ज़रूर कोई ना कोई थिंकिंग होगी, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। रेडियो महारानी के इंस्टा हैंडल पर आइए, वहाँ पर रेडियो महारानी सर्च कीजिए, बड़े आसानी से मिल जाएंगे और आरजे गौरव भी बहुत ईजिली मिल जाएगा। एंड इसी के साथ साथ बात करना चाहता हूँ एक और सिविक सेंस के केस की जिसमें एक पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। कहाँ का है ये वीडियो, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: हेलो,

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

एक वीडियो आती है हमारे इंस्टा के फीड पे और वो वीडियो देख के दिल खुश हो जाता है। वो है तुंगनाथ मंदिर की। आसपास इतनी ब्यूटी, इतनी ग्रीनरी, हर तरफ हरियाली हरियाली और आसमान से बादल जमीन को छू रहे थे। मगर इसी बीच फिर वो जो इन्फ्लुएंसर था उसने दिखाया एक ऐसा दृश्य जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा था, ये बोलूँगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। अभी एक रिसेंटली वीडियो वायरल हो रहा है तुंगनाथ मंदिर का। सबको पता ना तुंगनाथ कहाँ पर है? उत्तराखंड में ये मंदिर पड़ता है और वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करनी पड़ती है। लाइक केदारनाथ की जितनी ट्रैकिंग नहीं है बट स्टिल ट्रैकिंग है। तो कुछ लोग वहाँ जाते हैं, अब भक्ति के लिए जाते हैं, कुछ लोग वहाँ जाते हैं टूरिज्म के लिए जाते हैं। नो डाउट कोई भी जा रहा है, अच्छी बात है, जाइए। बट एक रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर कूड़ा मत फैलाइए, क्योंकि इस वीडियो में इस लड़के ने दिखाया, पहले तो ब्यूटी दिखाई, पहले ग्रीनरी दिखाई, फिर उसके बाद दिखाई वो सच्चाई जो हर टूरिस्ट वहां करके आ रहा है। यानी कि वहां प्लास्टिक के बॉटल का एक छोटा सा पहाड़ बन चुका है और लोग उनमें से एक भी इंसान वापस ले जाने को तैयार नहीं है। वहां पर काफी सारे लोग ये बोल रहे थे कि चलिए मिलकर इस गंदगी को हम लोग नीचे ले जाते हैं वापस, बट नहीं, कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। चलिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि आप लोग कहीं पर भी ट्रैवल करने जाते हैं तो आप लोग अपने साथ कुछ ना कुछ सामान ले जाते होंगे, जो कि ऑब्वियस ही बात है। बट जब आप ले जा सकते हैं तो आप उसको मेरे ख्याल से वापस भी ला सकते हैं। इतनी तो हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ, हम लोग अगर उठा के ले जा रहे हैं तो उठा के हम लोग वापस भी लेकर आएँ। जैसे कि पानी की बॉटल्स और उसके साथ साथ बिस्किट के रैपर्स और चिप्स के पैकेट, खासकर ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग अक्सर फेंक देते हैं। और काफ़ी बार हमने देखा है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को छोटी छोटी ड्रिंक्स पिलाते हैं, जैसे फ्रूटी, लिमका, कुछ भी, एनीथिंग, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, फिर उसकी बॉटल यूं ही फेंक देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये मत कीजिए, और आपका बच्चा यही सब सीखेगा। सोचिए अगर यही सब सीखेगा तो हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा इंडिया का। तो चलिए इसके बारे में ज़रा सोचिए। और अभी फ़िलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, खंड लग दी जैस्मिन सैंडलस की आवाज़ में, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।

पहले मैं बात कर रहा था कचरे की, लाइक फरीदाबाद की बात नहीं करी अभी मैंने, अभी तो मैं तुंगनाथ मंदिर की बात कर रहा था, वहां पर लोगों ने कचरा फैला रखा था। फिर मुझे अचानक से याद आया कि कल ही मैंने आप सभी से बात करी थी फरीदाबाद में प्रतापगढ़ लैंडफिल के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि गुरुग्राम लैंडफिल जो हमारा रोड पे है, गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे, वहाँ पर फरीदाबाद का कचरा लेना बंद कर दिया गया है और पूरा का पूरा फरीदाबाद दिन भर में 1200 टन कचरा जनरेट करता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो यहाँ पर मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, वो चीज़ आप लोगों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। पहला तो ये गीला और सूखा कचरा अलग अलग कर दीजिए, और जो गीला कचरा है ना उसका आप लोग कंपोस्ट बना सकते हैं, और अपने घर के पास जो आपके घर के पास कोई भी गार्डन है या फिर आपके घर में ही गमले रखे हैं तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको जो करनी है वो है प्लास्टिक अवॉइड करना है, जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। अब आप बोलोगे दूध की थैली तो प्लास्टिक में आती है, हाँ आई नो आती है, बट आप उनको भी कलेक्ट करके बहुत कुछ कर सकते हैं। देयर इज अ पर्सन नेम पीपल बाबा, आप उन्हें इंस्टा पे सर्च कीजिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा, आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि कैसे आप लोग ये जो दूध की थैली है उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उनको भिजवा सकते हैं, आप कलेक्ट कीजिए पूरे महीने की या फिर दो महीने की और फिर उसके बाद उनको भिजवा दीजिए। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है रीयूजेबल प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हो, और मतलब जो प्लास्टिक सिंगल यूज़ है ना उसको अवॉइड कीजिए। और अगर आपके घर में कोई भी फंक्शन है, कोई पार्टी है, तो वहाँ पर भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। एंड एक और बात मैं लास्ट में ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग अगर कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपको क्रश करनी है बॉटल आफ्टर यूज़। बॉटल अगर आप क्रश नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी क्या कि उसको लोग रीयूज़ करेंगे किसी और तरीके से। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि जब भी आप गाड़ी में चल रहे हैं और अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो बॉटल को आपको गाड़ी से बाहर नहीं फेंकना है। बस यही थे कुछ पॉइंट्स, और इनको अपने माइंड में रखिएगा। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए एक गाना चला रहा हूँ, इक्का बाचा डीनो जेम्स की आवाज़ में, मेरा फेवरेट वाला गाना आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आज शो की शुरुआत में मैंने एक बात बोली थी और वो बात ये थी कि फरीदाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं साइबर स्कैम्स के। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो क्या हो रहा है, साइबर स्कैम तो कर रहे हैं वो लोग, बट डिजिटल अरेस्ट के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं और इस चीज़ से हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई भी फ़ोन कॉल आता है, बोले कि हम कस्टम विभाग से बोल रहे हैं, आपका एक पैकेज पकड़ा गया जिसके अंदर ड्रग्स हैं, तो आप बोल देना कि हाँ मैंने मंगवाया, मेरे को भेज दो। देखो आप लोगों ने अगर कुछ मंगवाया ही नहीं है, ऑब्वियस बात है कि कुछ भी नहीं आएगा। एंड सेकेंडली, अगर आपको बोले वीडियो कॉल पर जुड़िए हमारे साथ, और मान लेते हैं कि आपके पास वीडियो कॉल आता है, तो आप लोगों ने कट कर दिया। अगर अननोन नंबर से आ रहा है, हम लोग अक्सर यही करते हैं कि हम लोग कट कर देते हैं। बट जो भी ये साइबर स्कैमर होएगा, ये आपके पास बैक टू बैक कॉल करेगा और इसकी प्रोफाइल पिक में कोई ना कोई पुलिस

फोन को उठा भी लिया है तब आपको क्या करना है? तब आपको सबसे पहले घबराना नहीं है ब्रो, क्योंकि घबराओगे तो फिर आप इनके चंगुल में फंस जाओगे। एक्चुअली में ये क्या करेंगे, बिल्कुल वर्दी में बैठे होंगे और फिर आपको बोलेंगे कि आपके पार्सल आया है, आपका ये है, आपका वो है, आपके साथ ठगी हुई है, ये कुछ भी एनीथिंग, ये आपको बोल देंगे और आपको डराने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद आपसे बोलेंगे, देखो इसको हम लोग सेटल कर सकते हैं, आप लोग हमें 1 लाख रुपए भेज दो, 1.5 लाख रुपए भेज दो, 10 लाख रुपए भेज दो, कुछ भी ऐसी बोलेंगे वो। और अगर आप उन्हें भेज देंगे ना तो ये पता क्या बोलेंगे, हमारे पास नहीं आए, आप फिर से भेजिए। अब उस हालत में इंसान और ज़्यादा घबरा जाता है और वो फिर उसके बाद तुरंत फिर से भेजना शुरू कर देता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है अवॉइड ऑल कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स ऑन व्हाट्सएप। और इसी के साथ साथ अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। अभी रिसेंटली फरीदाबाद में केस हुआ है साइबर स्कैम का, क्या था वो केस, कैसे उनके साथ हुआ ये सब स्कैम, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।

साता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे होश दिल चैन वैन सब उसी के पास है।

0: बाहर का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: तो तेरा इंतजार ही।
1: मान पानू की आवाज में गाना I'm done and I'm seriously done with all these cyber scammers। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड वंडा आप सभी के साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मानव। और मानव आज बताने जा रहा है एक ऐसा साइबर स्कैम जो अभी रिसेंटली फरीदाबाद में हुआ। तो हाँ मानव, बताओ जरा हमारे सारे लिसनर्स को कि क्या हुआ एग्जैक्टली।
2: हेलो गौरव, जो आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं, रिसेंटली मैं फरीदाबाद में कुछ स्कैमर्स ने इतनी चतुराई से इतना दिमाग लगाया कराए। पहले तो उन्होंने जो विक्टिम था उससे एक व्हाट्सएप ग्रुप में उसको ऐड किया है, उससे बात करी, उसको जो भयलाया फुसलाया, उसके बाद उसको एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवाया,
1: ठीक है।
2: फिर उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू उसको कुछ ऐसा झांसा दिया कि हम आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करवाएंगे
1: और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा,
2: आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिल जाएगा। उस प्रॉफिट के मतलब पहले उन्होंने फेक ऐप बनाया, उसमें उसने इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में, उसने प्रॉफिट भी देखा, मतलब उन्होंने फेक प्रॉफिट्स के वो बनाए स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो भी। फिर उस फेक प्रॉफिट्स में वो लालच में आ गए, फिर उसने टोटली 43 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद वो ऐप बंद हो गया, उस ऐप का कोई पता नहीं है।
1: तो ये होते हैं साइबर स्कैमर्स। अब अगर कोई भी साइबर स्कैमर मुझे सुन रहा है, तो भाई लोग अगर फेक ऐप बना रहे हो तो एक असली ऐप ही बना लो, करोड़ों का बिजनेस कर लोगे, बट नहीं तुम्हें तो करनी चोरी है। खैर मैं आप सभी को बता दूं, आप लोगों को अगर कोई भी अननोन ग्रुप में जोड़ा जा रहा है जहां पर आपका कोई जान पहचान वाला नहीं है, तो उस ग्रुप से तुरंत एग्जिट कर लीजिए। देयर इज नो वे ऑफ फास्ट मनी, इजी मनी कहीं से नहीं कमा सकते। अगर ऐसा होता तो हर कोई आज की डेट में करोड़पति लखपति होता। तो थैंक यू सो मच मानव इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए।
2: थैंक यू।
1: और इसी के साथ साथ आप लोग भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ, और गाना चला रहा हूं आप लोगों के लिए अप टू यू, धंधा नियोली वाला की आवाज में रेडियो महारानी पर।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद,
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

जो लास्ट वीक बारिश हुई थी ना, वैसी वाली बारिश फिर से आ सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। मौसम विभाग की जानकारी देने के लिए नहीं आया हूं अभी, बस ये बताने आया था आप लोगों को कि देखो लास्ट वीक जो बारिश हुई है ना, उसमें ना पानी जमा हुआ था बहुत सारी जगहों पर। इवन मेरे घर में एक टायर पड़ा हुआ था, उसके अंदर पानी जमा था, वो झुकी मैंने आज देखा और मैंने उसको साफ किया अच्छे से। किस्मत ये रही कि उसमें कोई मच्छरों ने अंडे नहीं दिए। तो मैं आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घर के आसपास देखिए, चेक कीजिए कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसमें पानी जमा हो रहा है, और अगर पानी जमा हो रहा है उसमें मच्छरों ने अंडे तो नहीं दिए हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं, और मानसून के बाद तो डेंगू मलेरिया के केसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहिए, बच के रहिए, फुसली वाले कपड़े पहनिए, साथ ही साथ जितने भी मस्किटो रिपेलेंट वाली चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, घर में स्प्रे रखिए या फिर एक अगरबत्ती आती नीम वाली वो ज़रूर जलाइए। और इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं निकलता हूँ यहाँ से और मिलूंगा आप सभी से कल शाम फिर से 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। वापस आएगी गीत, वैदेश बाजियाँ, इश्क वाली गीत, प्यार भरे गाने, प्यार भरी बातें। एंड मैंने उसका भी कल शो सुना था, खत वाला, बड़ा अच्छा था ना। तो आज का शो सुनते हैं हम लोग, मतलब मैं निकलते सुनूंगा और घर जाके मैच भी तो देखना, मैच चल रहा है। तो सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। सिमेट्री है ये गाना एड शीरन की आवाज़ में, ओनली फॉर यू गाइज। रेडियो महारानी 89.6 FM सुन रहे हैं आप। दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ।

0: अनुशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और इस बड़ी जिंदगी को छोटी ना बनाए, शराब पीकर गाड़ी ना चलाए।
2: जिंदगी

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में. जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं.
3: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है.
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.

अभी अभी आपने सुना है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, प्यार आता है। और सच बताऊं तो प्यार की सबसे प्यारी बात यही है जो बिना बुलाए आ ही जाता है, कभी किसी की हंसी में, कभी किसी की याद में, और कभी कभी किसी अजनबी की आंखों में बस आ जाता है। रेडियो महारानी से मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और शो ले आई हूँ आपके लिए इश्क बाजियां। और ये शो उन दिलों के लिए है जिनमें अब भी मोहब्बत की गूंज बाकी है। और आज का जो ये पहला आर है वो स्पेशल है इश्क शायराना, जहाँ मैं बात करती हूँ उन शायरों की जिन्होंने मोहब्बत को, जुदाई को और रिश्तों की उलझनों को इतने खूबसूरत अल्फाज दिए कि वो हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गए। और आज की रात मैं आपको लेकर चलूंगी फैज अहमद फैज की दुनिया में, जिनकी शायरी मोहब्बत में भी है और हकीकत में भी, वो अल्फाज जो आज भी उतने ही सच्चे लगते हैं जितने सालों पहले लिखे गए थे। और सोचिए ये बातें आज की लाइफ में कितनी जुड़ी हुई हैं। हमारी जेनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है ना, दिल में बहुत कुछ होता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। व्हाट्सएप पर ब्लू टिक आ जाता है, इंस्टा पर ऑनलाइन दिखते हैं, पर दिल की बात टाइप करने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ पर शायर हमारी मदद करते हैं क्योंकि वो वही सब कह जाते हैं जो हम महसूस करते हैं। और आज की रात मैं आपको लेके चलूंगी फैज अहमद फैज की दुनिया में, जहाँ मोहब्बत भी है, तड़प भी है और हकीकत भी। लेकिन शुरुआत करते हैं इस गाने से जो अपने शब्दों में यही कहता है, चाहे हालात जैसे भी हो, जब दिल किसी पे आ जाता है तो बस एक ही एहसास होता है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा का फोकस ज्यादा रखो।
3: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
4: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
3: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
5: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
0: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी

गाना है फ्रॉम द मूवी रहना है तेरे दिल में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और कभी नोटिस किया है, आजकल के रिश्तों में सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है, जल्दी प्यार, जल्दी टूटना, जल्दी आगे बढ़ जाना। लेकिन दिल वो आज भी पुराने जमाने की तरह स्लो है, उसको आज भी वही दर्द, वही मोहब्बत उतनी ही गहराई से महसूस होती है। और जब दिल बोलना चाहता है तो अल्फाज ढूंढ नहीं पाता, तभी तो हमें शायर चाहिए होते हैं जो हमारे दिल की बात हमारी जबान से पहले कह जाते हैं। और आज इश्क शायराना में आप सुनने वाले हैं फैज अहमद फैज को। फैज की शायरी मोहब्बत भी है और हकीकत भी। एक तरफ वो कहते हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। सोचो ये लाइन आज के टाइम में कितनी रिलेटेबल है, क्योंकि आजकल हम सबके पास अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, करियर का प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया के कंपैरिजन वाली लाइफ, इन सब के बीच प्यार अक्सर पीछे छूट जाता है। दिल तो चाहता है सब कुछ पहले जैसा हो, लेकिन जिंदगी बदल चुकी होती है। और फिर फैज हमें एक और तस्वीर दिखाते हैं, गुलों में रंग भरे, बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मतलब हाँ, दर्द है, हकीकत है, लेकिन मोहब्बत फिर भी जरूरी है, क्योंकि वही तो है हमारी ड्राई जिंदगी को फिर से रंग भरने के लिए। तो दोस्तों, आज अगर आप किसी रिश्ते में हो या किसी से दूर हो चुके हो, बस इतना याद रखना, मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है। कभी कभी मोहब्बत वो यादें होती हैं जो आपकी थकी हुई शाम को मुस्कुराहट दे जाती हैं। और यही तो है असली इश्क शायराना, दिल की बात शायर के अल्फाज और हमारी जिंदगी का कनेक्शन। और अब यहाँ पर सुनते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली की।

0: सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
1: कौन है?
0: रोडवेज वाले।
1: ओके
0: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
1: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
0: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ।
0: आगे सुनो।
1: सुनाओ।
0: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
1: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
0: अरे सुनो।
1: बाय।

गाना है फिल्म परम सुंदरी से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। और ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत सुकून का होता है जब दिन भर के भाग

दौड़ से घर पर लौटते हैं तो एक अलग सी खुशी महसूस होती है। दिन भर की जो थकान है वो सब दूर भाग जाती है। और पता है मेरे साथ भी यही है, कभी कभी इस टाइम की आरजे होने का अच्छा हिस्सा यही लगता है कि इस वक्त आप और मैं दोनों ही अपनी अपनी दुनिया से थोड़ा सा ब्रेक लेकर बस दिल की बातें कर रहे होते हैं। दिन भर की भाग दौड़, मीटिंग्स, डेडलाइंस, फैमिली टेंशंस, सबको पीछे छोड़कर ये कुछ पल सिर्फ आपके और मेरे होते हैं। अब असली सवाल ये है कि इन पलों में हम सबसे ज्यादा किसे याद करते हैं? ज्यादातर वही ना जिसके बिना अधूरे लगते हैं, यानी मोहब्बत। लेकिन फैज कहते हैं मोहब्बत ही जिंदगी का सब कुछ नहीं है। चलिए उनके शेर से आपको समझाती हूँ। वो कहते हैं कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। आजकल हम सोचते हैं कि प्यार नहीं है तो जिंदगी अधूरी है, लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी की लड़ाइयाँ, दर्द और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी कभी मोहब्बत से भी बड़ी हो जाती है। और फैज यही हमें याद दिलाते हैं कि प्यार जरूरी है लेकिन जिंदगी उससे कहीं बड़ी है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि मोहब्बत आपके लिए सब कुछ है तो जरा ठहर जाइए, जरा रुक जाइए। जिंदगी की किताब में मोहब्बत बस एक चैप्टर है, पूरी कहानी नहीं। और यही है इश्क शायराना, जहाँ शायर हमें मोहब्बत के साथ साथ जिंदगी का सच भी सिखाते हैं। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

0: बाहर का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

वैसे ही आशिकी कई बार बगावत भी कर जाती है। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और बहुत ही खास सा सेगमेंट है इश्क शायराना। देखिए, मोहब्बत पर बात हो चुकी है, अब बात करेंगे कुछ यादों पर, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब यादें शुरू हो जाती हैं, किसी की भी यादें। दिन भर की आवाजें, शोर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब जैसे कहीं गायब हो जाते हैं और तभी दिल में वो पुरानी सी यादें दस्तक दे जाती हैं। कभी किसी की मुस्कान की और कभी किसी की नजर की, ऐसे ही पलों को अल्फाज दिए फैज ने। इन्होंने कहा है कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीरानों में चुपके से बाहर आई, जैसे सहमी हुई रूठी हुई सहर आए, जैसे वीरानों में हल्के से हवा आ जाए। क्या कमाल का तसव्वुर है। यादों को उन्होंने बहार, सुबह और हवा से कंपेयर किया है, मतलब कोई शख्स अगर याद भी आ जाए तो दिल की वीरानी भी रंगों से भर उठती है। आज की लाइफ में ये एहसास उतना ही सच है। कितनी बार होता है ना, दिन भर सब कुछ ठीक चलता है लेकिन रात को अचानक किसी की याद आकर सब कुछ बदल देती है, जैसे दिल थकान भूलकर फिर से मुस्कुरा उठता है। फैज हमें यही सिखाते हैं कि मोहब्बत का सबसे बड़ा जादू यही है कि वो दूर रहकर भी, याद बनकर भी हमारी जिंदगी में रौनक भर सकता है। तो दोस्तों, आज अगर रात आपको किसी की याद आ रही है तो बस मुस्कुराकर उसे दिल में जगा दीजिए, क्योंकि मोहब्बत हमेशा पास होकर ही नहीं, कभी कभी बस एक याद बनकर भी बहुत गहरी हो जाती है। और यही है इश्क शायराना। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

सोनू निगम की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी परम सुंदरी, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और फैज की बातें चल रही हैं जो हमारी जिंदगी की कुछ सिचुएशन से बहुत ज्यादा कनेक्ट होती हैं, इनकी कुछ ऐसी शायरी, इनके कुछ ऐसे शेर। और अब एक और सिचुएशन है, ये सिचुएशन है कि जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जब हम किसी से बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन दिल भरा होता है, लेकिन जब वो शख्स सामने आता है तो बस खामोशी रह जाती है, लव्स दिल में ही अटक जाते हैं। इसे खामोशी को अल्फाज दिए फैज ने, और देखिए इनका ये शेर जो है वो कितना खूबसूरत है और कितना ज्यादा कनेक्ट होता है इस सिचुएशन से, कि दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। क्या कमाल की तसल्ली दे दी है ना इस शेर ने, मतलब चाहे हालात कितने ही मुश्किल से भरे क्यों ना हो लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, गम की शाम कितनी ही लंबी क्यों ना लगे आखिर वो खत्म होनी ही है और उस शाम के बाद एक नई सुबह आनी है। और आज की जिंदगी में ये शेर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, हम सब कभी ना कभी किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं, किसी रिश्ते का टूटना, किसी चीज का प्रेशर, फैमिली की बहुत सारी टेंशन्स, और उस वक्त लगता है कि शायद यही दर्द हमारी पूरी कहानी है, लेकिन फैज हमें याद दिलाते हैं ना ये सिर्फ एक शाम है और ये शाम ढल जाएगी क्योंकि शाम के बाद एक नई सुबह आनी बाकी है। तो यार अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही चल रहा हो ना, एक लंबी सी शाम चल रही हो, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, सुबह जरूर आएगी, और यही आपको सिखाता है इश्क शायराना। फिलहाल वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: ओए मुन्ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ। जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो। अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, होड़ दूंगा। ध्यान रखियो मुन्ना।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन खैर, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं एक टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां और मैं हूं

0: जनहित में जारी।
1: क्या कहा?

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोरदा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई।

लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई? दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, उनको कैसे प्यार हुआ? इसके बारे में बात होगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: कसम।
1: रवि साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोर दा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थी जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है, और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोर दा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोर दा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख, ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है। लेकिन किशोर दा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया, और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: के लिए नहीं, जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
0: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोर दा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहां जब किशोर दा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोर दा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

आवाजियाँ और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में

बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोरदा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोरदा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोरदा। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना

0: वजह।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद,
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो,

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमाकर वर्नबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फ्री समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेडर लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रिकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ऐप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

गाना है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और यहाँ पर मैं सेगमेंट ले आई हूँ दिल दिया गल्ला। आपके दिलों की बात आपके दिलों तक पहुंचानी है, और आज का टॉपिक है प्रॉमिस। जब कोई रिश्ते में हम बनते हैं तो बहुत सारे प्रॉमिस कर लिया करते हैं बगैर ये सोचे हुए कि ये प्रॉमिस हम पूरे कर पाएंगे कि नहीं, और ढेरों प्रॉमिस कर लेते हैं और सामने वाला कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता रहता है हमसे कि इतने प्रॉमिस किए हैं तो ज़रूर हम निभाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रॉमिसेस पे, उन वादों पे खरे नहीं उतरते हैं। रिश्ते में सब कुछ बहुत ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है और रिश्ते में केयर बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो वादे किए जाते हैं ना और ये जो वादे पूरे नहीं हो पाते हैं, इनसे सामने वाला जो है कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो इसीलिए आप वादे कीजिए, लेकिन वो वादे जो आप निभा पाए, और आज इसी बारे में बात होंगी। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। अगला गाना है फिल्म कल हो ना हो से।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी जिलायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

प्रतिभा सिंह की आवाज में है ये गाना कि वो मानता ही नहीं हम सफर तो क्या कीजिए, हर एक दुआ है गर बेअसर तो क्या कीजिए, और नजर की राह में यूं तो कई नजारे हैं पर तुम ही पे जाके जो ठहरी नजर तो क्या कीजिए। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत, और आपने वो गाना सुना है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो जो वादे किए हैं ना किसी से वो निभाने तो पड़ेंगे, और कई लोगों को वादों पर एतबार नहीं होता, जानते हैं ही टूट सकते हैं, फिर भी प्यार में डूबे लोग वादा करने में कोई परहेज नहीं करते, बहुत सारी कस्में खाते हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन वादे जो हैं वो या तो रिश्तों को एक बहुत अच्छी जगह पे ले जा सकते हैं, और वो कौन कौन से वादे हैं जो रिश्तों को खोखला कर देते हैं। जैसे एक वादे के टूटने से होती है रिश्ता टूटने की शुरुआत, और ये स्टडी भी बताती है कि इंसान दिन में 15,000 से ज्यादा शब्द बोलता है। इस दौरान लौट कर आने, फिर मिलने, जिंदगी भर साथ निभाने वाले जैसे तमाम वादे भी किए जाते हैं, लेकिन बात यह भी है कि इन 15,000 शब्दों में से सिर्फ कुछ 100 शब्द लोगों को अगले हफ्ते तक जोड़े रखते हैं। ये बहुत सारे वादे होते हैं कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऑल्दो सामने वाले का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ रहा है इन वादों से, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी है कि यार ये वादे टूट ना जाए। तो आज इन्हीं वादों पर बातें हो रही हैं, शो है इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।
2: क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं।

और इसी 90s मैशअप के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। और यहां पर बातें चल रही हैं प्यार में जो वादे किए जाते हैं उनको निभाना कितना जरूरी है यार। यूं तो लोग रिश्ते में चांद तारे तोड़ लाने और मौसम का रुख बदलने तक की बातें कर देते हैं, हालांकि ये सब पॉसिबल नहीं है। ये वादा करने वाला और जिससे वादा किया जा रहा है वो भी जानता है इनको, क्या ऐसा सिर्फ बोलने भर की बातें हैं, ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या होगा जब उन वादों को तोड़ दिया जाए जिसे पूरा करना पॉसिबल है, और सामने वाला आपसे एक होप लगाए बैठा है कि आप इन वादों को जरूर पूरा करेंगे। वैसे अगर एक भी वादा टूटता है ना तो सामने वाले इंसान का दिल टूट जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक वादे के टूटने के बाद एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की हर बात को एक अलग नजर से देखने लगता है कि यार एक प्रॉमिस तो पूरा किया नहीं गया और प्यार निभाएंगे। और आपको ये जो वादे होते हैं ना वो बड़बोलापन बना देते हैं, तो इसीलिए आपको सोच समझ कर वादे करने चाहिए। फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत और यहां पर बातें चल रही हैं प्रॉमिसेस को लेकर। कई बार हम भावनाओं में बहकर ऐसे शब्दों का यूज कर लेते हैं जो वास्तविक जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, और कुछ लोग इसे बहुत नॉर्मल मानते हैं कि बहुत नॉर्मल है, ठीक है वादा कर लिया तो क्या बड़ा कर दिया। लेकिन सामने वाले के दिमाग में ये बातें बस जाती हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब सामने वाला इसे सच मान बैठता है और सामने वाले से ऐसी एक्सपेक्टेशंस करने लगता है। एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इन्होंने बताया है कि वादे क्यों टूटते हैं, और इस पर इन्होंने एक बेस्ट रिसर्च स्पीच भी दी है। इसमें इन्होंने वादे टूटने का बहुत मेन रीजन बताया है कि भावनाओं में बहकर हम कुछ ऐसे शब्दों का यूज कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब भी किसी से आप वादा करें तो भावनाओं में बहकर ना करें, वो वादा करें जो एग्जैक्टली आप पूरा कर पाए, क्योंकि ये सामने वाले इंसान को तोड़ कर रख देता है। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही बेहतरीन सा गाना, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और मैं आज दिल दिया गल्ला में आपसे यही कहूंगी कि वादे कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन वो बचकाने वादे मत कीजिए जिन्हें आप पूरा ना कर पाए। अब वो वादे कीजिए जिसे आप पूरा कर पाए, और सामने वाला अगर आपसे एक्सपेक्ट भी करे तो आप वक्त के साथ अपने वादों पर खरे उतर पाए। वरना लोग आपको ये कह देंगे कि आप अपनी बातों पर नहीं रहते, अपनी बातों को कहकर मुकर जाते हैं। इसीलिए आप कोई भी ऐसा वादा ना करें जो पूरा नहीं हो सकता है। अभी मेरे चलने का वक्त है, मैं मिलूंगी आपसे कल जहां ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: कबीर
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: यही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है, बोलो।
0: तौबा तुमकी एक बात यही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है,

0: चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजे सरकार।
1: कहने था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: अरे सुनो

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: हाल कैसा है जनाब का?
5: क्या ख्याल है आपका?
4: तुम तो मचल गए,
5: यूं ही फिसल गए. आ आ आ.
4: हाल कैसा है जनाब का?
5: क्या ख्याल

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है,
1: शादी ना पापा ना,
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मुस्कुराई पहले जरा मुस्कुराई
1: पहले जरा
2: कभी ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

इश्क मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: Wheels of Life, Wheels of Hope, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

0: की गारंटी है।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना से तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: था है
1: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
1: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

ऑफ़कोर्स, पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। ओ करम खुदाया।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बाद बाकी में।

है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: नौकरानियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।
1: कुछ हटके हैं।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 एफएम कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर। डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
6: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
6: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
6: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
6: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
6: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
6: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
6: अरे यार, वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
2: सुनो सुनो, हेलो।

0: as all jalaun.
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।
1: कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
2: नारद जी आए हैं, देवी लक्ष्मी आई है, बाबा भोलेनाथ भी आए हैं। बाबा भोलेनाथ जी पूरे परिवार के साथ आए, लेकिन अब इनको वहां जगह कौन देगा जाने के लिए? इतनी भीड़ भाड़ में कोई नहीं देखता कौन वीआईपी है कौन नहीं है, सबको ही लगता हम ही आगे बढ़े। दर्शन नहीं करने दिया। बाबा जी ने सोचा अब तो दर्शन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, दोबारा दर्शन करने आएंगे। तो बाबा भोलेनाथ दोबारा दर्शन करने आए, कब? जब भगवान 4 दिन के थे। बड़ा अद्भुत वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। आज ठाकुर जी 4 दिन के हैं, 4 दिन का लाला है, बड़ा सुंदर रूप है। भोलेनाथ जी पहुंच गए, आकर के मैया के द्वार पर सबसे पहले कैलाश से निकले हैं बाबा भोलेनाथ। कैलाश से निकल ही रहे थे कि इतने में ही पार्वती जी ने आवाज दिया, अरे अजी कहां जा रहे हो? माताओं बहनों का ये थोड़ा सा स्वभाव होता है, जब पतिदेव किसी काम से बाहर निकले ना तो भले बात नहीं करेंगे, लेकिन जब निकलने ही वाले होंगे तब जरूर कहेंगे, अजी जा रहे हो? अच्छा आते टाइम 2 किलो आलू ले आना। तो चलते टाइम मैया टोकती जरूर है। तो भोलेनाथ जी बोले, कहीं नहीं, वो क्या है ना, लाला का जन्म हुआ है नंद महल, तो उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। पार्वती जी बोले, ऐसे दर्शन करने जा रहे हो? रूप देखा अपना, कोई घुसने नहीं देगा? नंद बाबा की सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है, आपको मालूम है वहां कोई घुस नहीं सकता बिना आज्ञा को। ऐसे रूप से आपको कोई घुसने देगा वो तो भला हो जो